0: 20 ਡਿਗਰੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 14 ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿੰਡੀ ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਪਏਗੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ 22-12 ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੈਡਨਸਡੇ 21-12 ਤੇ ਫਿਰ ਥਰਸਡੇ 21-11 ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ 21-10 ਸੈਟਰਡੇ ਜੁਲਾਈ 4 22-9 ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੁਲਾਈ 1 ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਕੈਟਰ ਥੰਡਰ ਸਟੋਰਮ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਰੀਵਿੰਡ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਤਨੂਰ ਮੌਸਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ 20,000 ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
1: सोचिए आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो चुका है फिर पता चलता है कि पूरे शहर की बिजली गुल है ट्रेनें जहां तहां रुक गई हैं और सारे सरकारी सर्वर अचानक ठप पड़ गए हैं और ये हैकर्स ने नहीं बल्कि सिर्फ एक AI मॉडल ने किया है सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है ना लेकिन दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस अलायंस 5 Eyes की एक चेतावनी के मुताबिक ऐसे हालात आने में बस कुछ ही महीने बचे हैं इस ग्रुप का कहना है कि AI साइबर खतरों की स्पीड स्केल और एडवांसमेंट को कई गुना बढ़ा देता है और ग्रुप ने दुनिया भर के नेताओं से तुरंत एक्शन लेने की अपील की है और ये चेतावनी तब आई है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर विदेशी नागरिकों को एंथ्रोपिक के मिथोस और फेबल मॉडल्स का इस्तेमाल करने से रोक दिया है तो क्या हम इस ग्लोबल AI रेस को अब एक साइबर हथियारों की रेस में बदलते हुए देख रहे हैं आइए समझते हैं 5 Eyes अलायंस ने इन फ्रंटियर AI मॉडल्स के खतरों को लेकर एक खुली चेतावनी दी है लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है एंथ्रोपिक की नई टेक्नोलॉजी आसान शब्दों में कहें तो एक नॉर्मल AI आपके लिए कोडिंग कर सकता है और उसमें गलतियां ठीक कर सकता है लेकिन मिथोस जैसे फ्रंटियर मॉडल्स कोड को स्कैन करके उसमें खामियां ढूंढ सकते हैं और फिर एक पूरा साइबर अटैक प्लान कर सकते हैं इसे 0-day एक्सप्लॉइट्स कहा जाता है ये एक ऐसी चीज है जो पहले सिर्फ बहुत ही एडवांस्ड हैकर्स कर पाते थे वो सॉफ्टवेयर की ऐसी छिपी हुई खामियां ढूंढ निकालते थे जिनके बारे में उसे बनाने वाली कंपनियों को भी पता नहीं होता था अब कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट और इस तरह के एक पावरफुल फ्रंटियर मॉडल का एक्सेस है वो ऐसी घटनाओं को आसानी से अंजाम दे सकता है इससे साइबर वॉर की स्पीड और उसका दायरा बढ़ जाता है इसी खतरे को देखते हुए एंथ्रोपिक ने अपने सबसे ताकतवर फ्रंटियर मॉडल क्लॉड मिथोस 5 को सिर्फ कुछ चुनिंदा कंपनियों तक ही सीमित रखा था ताकि वो अपनी साइबर सुरक्षा मजबूत कर सकें क्योंकि इसकी हैकिंग की काबिलियत आम जनता के लिए बहुत खतरनाक मानी गई थी वहीं क्लॉड फेबल 5 को एक सुरक्षित और पब्लिक वर्जन के तौर पर लाया गया था जिसमें सेफ्टी के लिए कई बंदिशें लगाई गई थीं। लेकिन ट्रंप प्रशासन एक नई सुरक्षा खामी का पता चलने पर घबरा गया ये एक ऐसी खामी थी जिसकी मदद से यूजर्स AI की इन सुरक्षा बंदिशों को आसानी से तोड़ सकते थे उन्होंने दावा किया कि विदेशी दुश्मन इन मॉडल्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर रातों रात सभी विदेशी नागरिकों के लिए दोनों मॉडल्स का एक्सेस बैन कर दिया दुनिया भर के डेवलपर्स और टेक एक्सपर्ट्स ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है दुनिया भर में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा लेकिन रातों रात इस शटडाउन का जो असर हुआ है वो वाकई बहुत बड़ा है वॉशिंगटन ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बंद नहीं किया है बल्कि उन्होंने अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर दुनिया के भरोसे को भी तोड़ा है लेकिन जरा सोचिए अगर अमेरिका किसी का भी एक्सेस ऐसे ही काट सकता है यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी दोस्त का भी जिसने हाल ही में एंथ्रोपिक के साथ एक बड़ी नेशनल AI डील साइन की थी तो कल को उन्हें दूसरे जरूरी सॉफ्टवेयर्स को ब्लॉक करने से कौन रोकेगा जब यूरोप एशिया और लैटिन अमेरिका के टेक कंपनियों को यह समझ आएगा कि वो अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं

0: सकते तो वो मजबूरी में दूसरे रास्ते तलाशेंगे, जैसे चीन के एडवांस और वहां की सरकार के सपोर्ट से बने ओपन सोर्स मॉडल्स। लेकिन इन चाइनीज मॉडल्स की भी अपनी कमियां हैं और ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आज दुनिया भर में अमेरिकी टेक, खासकर एआई पर निर्भरता कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। यूरोप डिजिटल आत्मनिर्भरता पर बहुत फोकस कर रहा है, लेकिन बाकी देशों को अभी लंबा सफर तय करना है, क्योंकि एआई को चलाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और भारी भरकम निवेश की जरूरत होती है। हो सकता है कि सुरक्षा का ये दांव खुद अमेरिका पर ही भारी पड़ जाए, क्योंकि अमेरिका असल में उन लोगों को साइडलाइन कर रहा है जो सिस्टम की बड़ी सुरक्षा कमियों को पकड़ने और उन्हें ठीक करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स और लीडर्स अब एक सुर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि बिना रोक टोक के बढ़ रहे एआई के खतरों को काबू करने का यही एक तरीका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा होना मुमकिन है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
1: बिल्कुल, ये एंथ्रोपिका जड़ा एक कंपनी है, बेसिकली तुम्हें पता भी ये बहुत एडवांस वर्जन ने तैयार किया जी, बट अमेरिका ने अमेरिका नु डिफेंस वास्ते यूज नहीं करन दे रही थी। ते हुन पता चलिया अमेजोन ने भी जदों काफी वड्डी इहदे च इन्वेस्टमेंट कीती सी, ते फाइनली उहने इह देखिया कि भी इहदे च फ्लोज ने सिस्टम दे अंदर जो कुछ इहनू कहा गया ना करन वास्ते इह उह भी करदा, ते उह सारियां चीजां लभ के लिया रहा जिहड़ियां किसे भी बंदे नू इस लैवल तक लैके जा सकदियां कि भी उहदा विनाशकारी काम जिहड़ा हो सकदा। सो इह सारी चीजां नू ध्यान च रखदियां यूएस ने प्लान किया भी इन्हू स्टॉप किया जाए तो जे उन्होंने वास्ते यूज किया जाएगा। सो आने वाले टाइम च होर भी अपडेट जी आएगी, बट एमेजोन ने खुद यदि कंप्लेन की जिन्हें कि ये इन्वेस्टमेंट की 8 बिलियन डॉलर की, उन्हें खुद ही गवर्नमेंट ने कहा कि भी इस सॉफ्टवेयर में चैक किया जाए क्योंकि ए आई का जो मॉडल है ये काफ़ी अगे तक नुकसान पहुँचाने वाला लगता। कुछ एक खबर सुन लें जी, पहला एक्चुअल खबर वाली खबर, तो फिर इस तो बाद बाकी दल बात करते हैं।
2: ने पुराना पुलिस सर्टिफिकेट ही होवेगा मानता प्राप्त। अपराधक अंसरां दा कैनेडा तो मुक गया दाना पानी, दो जणियां नूं चुप चपीते बिठाया दिल्ली वाले जहाज च। कैनेडा सरकार वालों शरणार्थी प्रणाली च वड्डे सुधारां दा ऐलान, शरण दे दाव्यां नूं पारदर्शी बनाउण लई लोकां तों मंगे सुझा। कनेडियन नागरिकता दे दस्तावेज वापस मंगवाउण ते विवाद, कईआं दे पासपोर्ट वी रद्द, इमीग्रेशन मंत्री वालों जांच दे हुकम। कैनेडा जाण दे चाहवान नौजवानां लई इक अहम खबर है, कैनेडा सरकार ने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा प्रोग्राम तहत वर्क परमिट अपलाई करन वाले विदेशी नागरिकां लई पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दे नियमां च वड्डा बदलाव कीता है। इमीग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा वालों जारी कीतियां गईयां नवीयां हदायतां मुताबक हुण नियमां नूं पहलां नालों वधेरे स्पष्ट कर दिता गया है। नवीयां हदायतां मुताबक बिनेकार जिस देश च मौजूद समय रह रहा है उत्थों दा पुलिस सर्टिफिकेट आईआरसीसी कोल वर्क परमिट की अर्जी पहुंचण मीति तो 6 महीने के अंदर अंदर जारी होया होना चाहिए है। पहला इस नियम च समय की सीमा नू लैके इन्नी स्पष्टता नहीं सी। इस तो अलावा जेकर कोई बिनेकार 18 साल की उम्र तो बाद किसी दूजे देश च 6 महीने जां उस तो वध समा रहा है ता उस नू उस देश दा पुलिस सर्टिफिकेट देना पवेगा। इह सर्टिफिकेट उस देश नू आखरी वार छड्डण तो बाद दी तरीक दा जारी होया होना चाहिदा है। इह नियम मुख तौर ते उन्हां नौजवानां ते लागू हुंदे ने जो आईईसी प्रोग्राम राही कैनेडा च अस्थाई तौर ते रहण अते काम करन लई अपलाई करदे ने। इह प्रोग्राम आम तौर ते 18 तों 35 साल दे नौजवानां लई हुंदा है। अमरीकी नागरिकां अते उत्थों दे पक्के वसनीकां ते वी इह नियम लागू होणगे जेकर उह किसी मानता प्राप्त संस्था दे सहयोग नाल अपलाई कर रहे ने। हालांकि जेकर कोई अमरीकी नागरिक सिर्फ अमरीका च ही रह रहा है तां उस नूं इस सर्टिफिकेट देण दी लोड़ नहीं होवेगी। कनेडियन इमीग्रेशन विभाग ने स्पष्ट कीता है कि पुलिस सर्टिफिकेट बनन च काफी समा लग सकदा है, इसलिए बिनेकार नूं अर्जी देण तों बहुत पहलां ही अपने दस्तावेज इकट्ठे करने शुरू कर देने चाहीदे ने। इस दे नाल ही इह वी याद करवाया गया कि ऑनलाइन पोर्टल ते पुलिस सर्टिफिकेट अपलोड करन लई सिर्फ एक ही खाना हुंदा है, इसलिए जिन्हां बिनेकारां कोल एक तों वध देशां दे पुलिस सर्टिफिकेट हन उह उन्हां सारिआं चों इक्को पीडीएफ फाइल विच जोड़ के अपलोड करन। ए बदला कैनेडा दी सुरक्षा अते बिनेकारां दे अपराधिक पिछोकड़ दी सही जांच यकीनी बनाउण लई कीते गए ने। कैनेडा सरकार वालों दो पंजाबी नौजवानों नूं डिपोर्ट करन अते सरी पुलिस वालों तीजे नूं हिरासत च लै जाण दी घटना दरमियान दर्जना लोकां नूं डिपोर्टेशन तों राहत दा ऐलान कीता गया है। 20 जून 2025 तों 19 जून 2026 दरमियान असाइलम क्लेम रद्द होण, प्री रिमूवल

0: ਤੇ 29 ਮਿੰਟ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਟ 29 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ 0-0 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0-0 ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਕੁਛ ਇੱਕ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ T20 ਮੈਚ ਵੀ ਅੱਜ ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ 1 ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਚ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾ ਸਕਣ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰੰਪ ਤੇ ਮੈਲੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7
1: बीते कुछ वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच विवाद खुलकर सामने आया है। इस उठापटक से यूरोप की सबसे चर्चित राजनीतिक दोस्ती ठंडी पड़ती दिख रही है। कुछ समय पहले तक लोग मेलोनी को ट्रंप विस्परर कहते थे। इसकी बानगी जनवरी 2025 में देखने को मिली जब ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें सबसे आगे बैठने की जगह मिली। समारोह में ये अहम जगह पाने वाली वो अकेली यूरोपीय नेता थीं। ट्रंप से उनकी नजदीकी को सिर्फ कूटनीतिक रिश्ता नहीं माना गया बल्कि ये उनके बड़े मंच पर मौजूदगी का सबूत था। लेकिन ट्रंप की अनिश्चितता मेलोनी के लिए मुश्किल भरी साबित हुई और उनकी साख को देश और विदेश दोनों जगह चोट पहुंची। ट्रंप और मेलोनी में पहली बड़ी दरार मार्च के आखिर में आई जब इटली के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिकी सैन्य जहाजों को सिसिली के सिगोनेला नेटो एयरबेस इस्तेमाल करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। इटली ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि उनका कानून और जनता दोनों ही युद्ध के खिलाफ थे। कुछ हफ्तों बाद विवाद और बढ़ गया। अप्रैल में ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोप लियो 14वें पर हमला बोला क्योंकि उन्होंने युद्ध की आलोचना की थी। ट्रंप ने उन्हें कमजोर बताया था। कैथोलिक देश की नेता मेलोनी ने ट्रंप के बयान को अस्वीकार्य बताया। मेलोनी की सख्त प्रतिक्रिया ट्रंप को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इटली के एक अखबार से कहा, मैं हैरान हूँ, मुझे लगा था उनमें हिम्मत है लेकिन मैं गलत था। अब वो पहले जैसी नहीं रही और इटली भी पहले जैसा देश नहीं रहा। इसके बाद जून तक हालात बेहतर दिखे। फ्रांस में G7 सम्मेलन में ट्रंप और मेलोनी को बातचीत करते हुए देखा गया। मेलोनी ने पत्रकारों से कहा कि बातचीत का माहौल बहुत सकारात्मक था और कोई टकराव नहीं था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ट्रंप और मेलोनी के बीच मामला फिर बिगड़ गया। ट्रंप ने एक चैनल को दिए फोन इंटरव्यू में कहा कि मेलोनी ने समिट में उनसे फोटो के लिए मिन्नत की थी। मेलोनी ने तुरंत इसका जवाब दिया। उन्होंने वीडियो जारी कर ट्रंप की बात को पूरी तरह मनगढ़ंत करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सहयोगियों के साथ ऐसा क्यों करते हैं। मैं बस इतना कह सकती हूं कि अफसोस है कि वो पश्चिम के दुश्मनों के खिलाफ ऐसी मजबूती नहीं दिखाते। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, न मैं मिन्नत करती हूं और न ही इटली। इसके बाद इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी ने अपनी प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा रद्द कर दी। ट्रंप ने इसके बाद फिर दोहराया कि मेलोनी ने बार बार तस्वीर की मांग की थी। मेलोनी पर आरोप लगाया कि वो अब दोबारा दोस्त बनने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि अमेरिका ने ईरान को सैन्य रूप से हरा दिया है। जैसे ही ये विवाद ठंडा पड़ता दिखा तो सैन्य ठिकानों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। पिछले बुधवार को नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने फॉक्स न्यूज को बताया कि लगभग 500 विमान इटली में अमेरिकी ठिकानों से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत उड़ान भर चुके हैं। अमेरिका इसराइल के ईरान के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया गया। रूटे ने कहा कि ये यूरोप से मिलने वाले बड़े समर्थन का हिस्सा है जिसमें हजारों उड़ानें शामिल हैं। लेकिन इटली को ये बात अच्छी नहीं लगी। इटली के रक्षा मंत्रालय ने रूटे के बयान को गलत और भ्रामक बताया।

0: मंत्रालय ने कहा कि उसने सिर्फ तकनीकी और सामान पहुंचाने वाली उड़ानों को इजाजत दी थी, लड़ाई से जुड़ी उड़ानों को नहीं। बाद में नेटो के एक प्रवक्ता ने साफ किया कि रूटे का मतलब सिर्फ ये दिखाना था कि सहयोगी देशों ने पहले से बने ठिकानों के समझौते का पालन किया है। इन बातों से इटली में राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, जबकि मेलोनी की सरकार बार बार कह चुकी है कि उसने ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई के लिए इटली की जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। अब मेलोनी के सामने बड़ा सवाल है कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह कैसे तय करेंगी और क्या मेलोनी और ट्रंप फिर से साथ आ पाएंगे। लेखक और अमेरिका इटली परिषद के उपाध्यक्ष जियानी रियोटा का कहना है, मेलोनी यूरोप और अमेरिका के बीच खड़ी नहीं हो सकी। पोप वाले मुद्दे ने मामला बदल दिया। मेलोनी को पोप का साथ देना पड़ा और ट्रंप को ये बात गवारा नहीं लगी। ट्रंप हमेशा दोस्त या दुश्मन वाली सोच रखते हैं, या तो मेरे साथ रहो या मेरे खिलाफ। जब ये समझ टूटी तो उन्होंने दबाव बढ़ाया और मेलोनी ने अपनी सख्त महिला वाली छवि दिखा दी। वैसे राजनयिक हलकों में कोई भी रिश्ता पूरी तरह टूटना नहीं चाहता। असल परीक्षा अगले महीने अंकारा में होने वाले नेटो समिट में होगी, जहां G7 के बाद पहली बार ट्रंप और मेलोनी फिर एक दूसरे के आमने सामने होंगे।
1: सो ये सीगा जी एक विवाद जड़ा तुसी चाहने हैं दोना कंट्रीज दे जड़े लीडर्स ने है के वैसे दोनों बहुत ड्रामेबाज ने। मेलोनी ते पिछे जी मेलोडी खा रही सी की वैसे तनु पता है मोदी दे नाल ते इट्स नॉट अबाउट की मेलोनी खा रही सी या मोदी खवा रहा सी, बट कुछ चर्चा जड़ियां है सुर्खियां दे विच बने रहना चाहते ने लोकी ताकि कुछ ना कुछ इनफॉरमेशन जड़ी इस तरह की जाती रहे सामने। हाले भी जरा वर्ल्ड कप फीफा का मैच जरा तुम पता भी अच्छ कैनेडा साउथ अफ्रीका का 36 मिनट हो लगे तो 0-0 के उत्ते ही है दोनों कंट्री जड़िया ने वो चल रही हैं। सो समा जरा दसेगा अच्छ वैसे किदा का मैच रहा, बट सो फार पहले हाफ के कोई बहुता फर्क जरा नजर नहीं आया तो स्कोर जी उस तरीके ही चलती जा रही है। सो मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम 7-8 तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक ये प्रोग्राम तुसी सुनते हो। तो प्रोग्राम दे विच अलग अलग तरह दी खबरां ते गल्लां पता जिहड़ियां ने ओह तुहाडे नाल आपां शेयर करते हैं। अज दे प्रोग्राम च भी कुछ इसे तरीके नाल इनफॉर्मेशन जिहड़ी ओह शेयर करते रहांगे, बट मैनूं लगदा वी इक छोटी जी ब्रेक ले लईए ते ब्रेक तो बाद फिर आपां अपनियां गल्लां पता जिहड़ियां ने इसे तरीके नाल जारी रखते हैं। सबरंग रेडियो 94.7 FM ते मिलते हैं। एक छोटी जी ब्रेक।
2: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
3: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नूं कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
2: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
3: नवे पेशेंट्स हुण एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
2: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
2: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
4: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6090 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदा। You're listening to Calgary's most popular radio, Radio Sabrang, 94.7 FM.
4: Take your business beyond walls and straight to your audience. Sabrang Radio now comes live to your

0: ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ।
1: ਤਾਂ ਅਬ ਇਸਕਾ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਹੈ ਘੀ, ਔਰ ਘੀ ਵੀ ਕੌਨ ਸਾ, ਘਰ ਕਾ ਘੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਜਿਸਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ।
2: डेयरी वाला और देसी सेम ही होता है ना?
1: नहीं, डेयरी वाला और देसी घी जब मैं बोल रहा हूं तो नहीं, इस केस में सेम नहीं है। नहीं,
2: हम तो एगमार्क वाला लाते हैं, वो तो देसी।
1: एगमार्क वाला लाते हो, घी देसी हो सकता है वो, लेकिन यहां जो मैं बोल रहा हूं ना घर का घी वो, और मतलब इसको समझो थोड़ा, देखो। अच्छा, एगमार्क वाला घी लाते हो, कौन से वाला लाते हो? एगमार्क वाला, आपको पता है एगमार्क 3 टाइप का होता है? हाँ भाई, कोई बताएगा एगमार्क की फुल फॉर्म क्या है? नहीं, नहीं पता, बस यही गड़बड़ है ना, खा रहे हो, ठप्पा लगा हुआ है, उसकी रिसर्च में जाओ थोड़ा सा। तो देखो, एगमार्क एक्चुअल में क्या है, अंग्रेजों ने शुरू किया था। एगमार्क, एजी मतलब एग्रीकल्चर, कि इंडिया के जो एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट थे ना उनकी मार्केटिंग के लिए एगमार्क आया था, उनके स्टैंडर्ड के लिए। तो अब जो एगमार्क होता है घी के केस में, अगर मैं बात करूं तो एगमार्क 3 टाइप का होता है बेटा, तीनों एक जैसा दिखेगा आपको, ऐसे ऐसे होगा, बीच में ऐसे इंडिया का मैप होता है और लिखा होता है एगमार्क। अब ये जो एगमार्क लिखा होता है ना घी में, वो 3 कलर में मिल सकता है आपको। हो सकता है एगमार्क जो है वो रेड कलर में हो घी के ऊपर, हो सकता है जो एगमार्क है वो ब्राउन कलर में हो, वो चॉकलेट वाले कलर में, ब्राउन नहीं, चॉकलेट वाले कलर में, और हो सकता है ये ग्रीन कलर में हो। तो अब पहले तो ये बताओ आप कौन से वाला लाते हो एगमार्क घी, नहीं अंदाजा? तो देखो, जो रेड वाला एगमार्क घी है, अब यहां पे मैं मार्केट में बिकने वाले उस घी की बात कर रहा हूं जिसको डेयरी वाले बनाते हैं और डेयरी में बना हुआ देसी घी है। तो पहली बात तो यही 3 तरह का हो गया, रेड, चॉकलेट और ग्रीन, 3 कलर के अंदर होगा। तो ये किस बेसिस पे क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं? अच्छा, आपने ना टॉपिक ऐसा छेड़ा है जिस पे खूब रिसर्च किया हुआ है। रीजन क्या है कि खुद भी खूब बनाया है और खाया भी खूब है और आज भी खाते हैं खूब, ठीक है? तो देखो, रेड कलर, चॉकलेट और ग्रीन, ये किसके बेसिस पे है? तो अभी हमने बात करी थी ना ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड मतलब अभी बताया था ओमेगा 9। तो ओमेगा 9, ओ भाई साहब, हर चीज लिखनी नहीं होती, ये इसने क्वेश्चन पूछ लिया इसलिए समझा रहा हूं मैं, लिखने में लगा हुआ है हर चीज, इधर देख ले 2 मिनट। अब देखो, है ना, जो ऑलिक एसिड होता है, ऑलिक एसिड अगर 1% तक है, 1% की लिमिट है अगर ऑलिक एसिड की, तो उसको रेड कलर में एगमार्क देते हैं घी के अंदर। ये डेयरी वाले घी में बेस्ट घी होता है, तो इसको घी नहीं कहते, इसको कहते हैं स्पेशल ग्रेड घी, स्पेशल ग्रेड घी। फिर ऑलिक एसिड थोड़ा बढ़ गया, 1.3%, 1.5% की रेंज तक लिमिट चली गई, उस टाइम इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड देसी घी। ये मैं अभी घर वाले घी से कंपेयर नहीं कर रहा इसको मैं। और फिर आता है ग्रीन, तो ग्रीन वाला जो होता है उसमें ऑलिक एसिड 2% तक की लिमिट देते हैं, तो इसको बोल देते हैं जनरल देसी घी। तो पहले तो आज ये देखना घर जाके, पता लग रहा है? बताओ कौन से वाला एगमार्क खाते हो आप, आइडिया है कुछ? अरे बोल तो सही कुछ, ग्रीन मतलब देखा है या नहीं देखा कभी, बस खाए जा रहे हैं। चलो, अब मैं थोड़ा सा हिसाब किताब कर देता हूं आपके जो डाउट है। तो देखो, जो देसी घी है ये 2 टाइप का आता है दुनिया में, एक वो देसी घी जो डेयरी पे बनता है, जिसको ज्यादातर लोग खाते हैं, जिसको आप अभी अभी बोल रहे थे कि एगमार्क लगा होता है। दूसरा वो देसी घी जो मेरे साथ चलो मेरे घर पे बनेगा, या आप में से भी कई लोग होंगे जो बना के खाते हैं घी, जिसको मैं कहूंगा होम मेड देसी घी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस तो देखो पैसे का है, आप मार्केट में जाओ, अच्छे वाला देश

घी आपको अप्रोक्सीमेटली 800-900 हजार रुपए किलो में मिल जाएगा। ये लीटर में भी मिलेगा, किलो के अंदर कैलकुलेट करो 100 रुपये और आ जाएगा। होममेड देसी घी अगर आप आओगे तो शुरू ही 1200 रुपये से होगा, और हो सकता है मेरे को कहोगे सर आप ला के दो, मैं कहूंगा भैया 2000 रुपये लूंगा 1 किलो के। तो ऐसा क्या है कि ये 3 किलो, मतलब ये 1 किलो और ये 3 किलो बराबर आ रहा है? इसका थोड़ा साइंस समझते हैं, है ना? और इससे ये भी पता लगेगा कि ठीक है कि अब भी लिख रहा है, चलो ठीक है। तो इससे क्या है, ये पता लगेगा कि भाई घी खाना ही क्यों चाहिए। तो देखो यार, पहले तो है ना, इसको समझने के लिए प्रोसेस समझनी पड़ेगी। प्रोसेस सिंपल सी होती है, अपन दो पार्ट कर लेते हैं, इधर होममेड घी की बात कर लेते हैं। तो जो घर में घी बनता है उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हम दूध लेते हैं, दूध से हम दही बनाते हैं, दही से हम चर्निंग करते हैं, मक्खन बनाते हैं, बिलोना करते हैं उसका। मक्खन के साथ एक बाई प्रोडक्ट भी मिलता है जिसको छाछ बोलते हैं। और फिर जो मक्खन होता है ना, इसको धीमे धीमे धीमे धीमे गर्म करते हैं, और गर्म करके फिर हम इसमें से घी जो है ये बना लेते हैं। ये घर पे बनाने वाले घी की प्रोसेस है। डेयरी में जाओगे तो डेयरी वाले क्या दिमाग लगाते हैं, ये थोड़ा स्मार्ट होते हैं लोग, ये बोलते हैं कि दूध से दही मत बनाओ, दूध जो है इसको गर्म करो। अब गर्म का सिंबल मैंने कई बार बताया साइंस में, एक ट्रायंगल बना दो, डेल्टा वाला साइन हो गया। दूध को गर्म करो, गर्म करके फिर दूध को ठंडा करो। जब उसको ठंडा करोगे दूध को गर्म करके, तो उसके ऊपर दूध है ये, और दूध के ऊपर जम जाएगी बहुत मोटी मलाई। ये जो मलाई है ना, इसको डेयरी इंडस्ट्री में कहते हैं क्रीम। ये क्रीम अलग कर लो, प्लस ये जो बचा हुआ दूध है, इस दूध का करो सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जोर से घुमाते हैं उसको, इससे भी क्रीम अलग हो जाएगी। तो क्रीम अलग कर ली, अब क्रीम जो है ना, क्रीम में मैक्सिमम फैट आ गई, और फिर क्रीम को गर्म करो, एकदम से हीट करो इसको, और जो फैट निकल के आई वो बन गया घी। अब दोनों बना तो घी रहे हैं, बना दोनों ही दूध से रहे हैं, बट फर्क है। फर्क क्या है, अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रोसेस है ना, ये फर्क करेगी, और इस प्रोसेस का फर्क इतना गहरा है, इस बात को वो जनरेशन नहीं समझ सकती जो आंख बंद करके 200 ग्राम मैदा से बने हुए पिज्जा को खाने के 400 रुपए देके आ जाते हैं। इस बात को, देसी घी की इंपॉर्टेंस को, वो लोग समझ ही नहीं सकते जो अपने आप को स्मार्ट दिखाने के चक्कर में वो इतनी इतनी ओमेगा 3 की वो कैप्सूल वाली डिब्बी लाते हैं और उसको खा के काम चला रहे हैं। इस बात को हंस मत अभी, इस बात को वो लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते जो जनरेशन एक कोल्ड ड्रिंक पी रही है जिसके अंदर उसको पता ही नहीं है कि 10 रुपए के लायक है क्या, जो 10 10 छोड़ो 100-100 रुपए दे देते हैं उसके ऊपर। तो अब ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहां पे? तो मिल्क से कर्ड बनना क्या है बेटा, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हो रहा है। अब फर्मेंटेशन जैसे ही आया, तो फर्मेंटेशन में तो एक चीज और इन्वॉल्व हो गई, कि कौन इन्वॉल्व हुआ? फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होगा बैक्टीरियल फ्लोरा। कौन सा बैक्टीरिया? तो यहां पे हमारे गट के लिए बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। यहां पे बैक्टीरियल फ्लोरा में आप सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लो, जो दही को बनाता है, लैक्टोबैसिलस। हालांकि इसमें भी दो तीन तरह के होते हैं, बट अभी लैक्टोबैसिलस ही ले लो, कंफ्यूज नहीं होना। अब होता क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या आएगा, तो अब ध्यान से सुनना, दोनों के दोनों घी, बशर्ते कि डेयरी वाला बड़ी अच्छी क्वालिटी से बना हुआ है, दोनों के दोनों घी 99% से ज्यादा फैट है। दोनों के दोनों घी जो है, उनमें विटामिन ए है, विटामिन के है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। दोनों के दोनों घी जो है, उनके अंदर ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 भी है, ओमेगा 9 भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं दोनों में है, बट फर्क क्या है? तो अब ध्यान से सुनना, और इस फर्क को ध्यान से समझ लिया अगर आपने, तू तो आज के बाद कम से कम नहीं खरीदेगी, है ना, डेयरी वाला घी। अब ऐसा नहीं है डेयरी वालों की बिक्री कम कर रहा हूं मैं, है ना, लेकिन जो फैक्ट है वो है, जो सत्य है वो सत्य है। विज्ञान क्या बोलता है, आई नो दैट, आई डोंट नो, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। और यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है नई जनरेशन की, कि दो अक्षर पढ़ के

0: पांच अक्षर बोलने की कैपेसिटी आ गई उनमें। ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन अभी निकल के आता है। देखो तो अब मैंने कहा फर्मेंटेशन हो रहा है, तो देखो होता क्या है, जब आप देसी घी बनाते हैं, देसी घी का मतलब जो मैं बता रहा हूं घर पर होम मेड घी, HMG लिख रहा हूं, होम मेड घी, तो इसको बनाते टाइम जो फर्मेंटेशन हो रहा है, उस फर्मेंटेशन में सबसे पहला फायदा क्या होगा कि जो मिल्क है ना, मिल्क से जब कर्ड बनेगा तो मिल्क के अंदर बहुत सारा अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है। ये जो बीटा कैरोटीन है, इस बीटा कैरोटीन को फर्मेंटेशन जब होता है, यानी लैक्टोबैसिलस जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उस बीटा कैरोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है रेटिनोल में, या रेटिनोल के कोई ऐसे प्रिकर्सर में जिसको इजी हो पचाना। ये पहली बात बता रहा हूं मैं। नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना, विटामिन के सबने पढ़ रखा है, क्या काम आता है विटामिन के, तू ही बता।
1: सो आई होप भी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਘਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘਿਓ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਡੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM।
2: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ, ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, www.iwebguy.ca।
3: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
4: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
3: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
4: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
3: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
4: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
3: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
4: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
5: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
6: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIA applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhda hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat hethe immigration ate insurance diyan sewawan ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ 403-225-1111। ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸਿਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟਡ,
7: ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ,
6: 403-225-1111।
5: ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਟੂ ਐਵਰੀ ਕੋਰਨਰ ਵਿਦ ਇਨ ਅ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੀਚ, ਸਾਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵੌਇਸਿਸ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ। ਵੈਦਰ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਕੈਲਗਰੀ, ਏਅਰਡਰੀ, ਚੈਸਟਰਮੇਅਰ, ਕੋਕਰੇਨ, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond. We are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca,

0: ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਘਿਓ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਰ ਕੇ ਘਿਓ ਖਾਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੇਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: तो इसको बनाते टाइम जो फर्मेंटेशन हो रहा है, उस फर्मेंटेशन में सबसे पहला फायदा क्या होगा कि जो मिल्क है ना, मिल्क से जब कर्ड बनेगा तो मिल्क के अंदर बहुत सारा अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है। ये जो बीटा कैरोटीन है, इस बीटा कैरोटीन को फर्मेंटेशन जब होता है, यानी लैक्टोबैसिलस जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो उस बीटा कैरोटीन को ये कन्वर्ट कर देता है रेटिनोल में, या रेटिनोल के कोई ऐसे प्रिकर्सर में जिसको इजी हो पचाना। ये पहली बात बता रहा हूं मैं। नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना, विटामिन के सबने पढ़ रखा है, क्या काम आता है विटामिन के, तू ही बता। हाँ भाई, क्या करता है विटामिन के? चोट लग जाती है तो क्या, जोर से बोलो, क्या खून रुकता है? हाँ, रक्त का थक्का बनाता है। तो विटामिन के जो है, विटामिन के दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है विटामिन के वन, एक होता है विटामिन के टू। विटामिन के वन जो है, ये आपको पढ़ाया जाता है जनरली फाइलोक्विनोन, यही पढ़ाया होगा, मैंने भी तुमको लिखवाया होगा जब यही कहा होगा कि विटामिन के जो है वो फाइलोक्विनोन है। अब जो मिल्क से कर्ड बना है, दूध से दही बना और दही से जब मक्खन बना, इस प्रोसेस में क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनना, कि इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन जब हुआ तो जो विटामिन के वन था, यानी कि जो क्या था, फाइलोक्विनोन था, वो फाइलोक्विनोन दही बनने में और दही से मक्खन बनने की प्रोसेस में कन्वर्ट हो गया के टू में। के टू जो होता है इसको बोलते हैं मेनोक्विनोन, मेनोक्विनोन। अब ये जो मेनोक्विनोन बन गया ना, मेनोक्विनोन हीट स्टेबल है बेटा, हीट स्टेबल है, और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, बॉडी सीधा एब्जॉर्ब कर लेती है इसको। अभी तक मैं सिर्फ विटामिन की बात कर रहा हूं, अब सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर पे चलते हैं। तीसरे नंबर पे डी की बात जब आती है तो आपको याद रखना पड़ेगा डीएचए, और यहीं पे बता देता हूं ईपीए। डीएचए और ईपीए जो है, ये दोनों के दोनों एग्जांपल हैं ओमेगा थ्री के, ओमेगा थ्री। अब होता क्या है कि गाय जो है वो घास खाएगी, ये घास है, इमेजिन करो। अब दो सिनेरियो बता रहा हूं मैं आपको, एक ये घास है, कौन सी घास है, ओपन ग्राउंड की घास है, जिसमें अलग अलग टाइप की घास खा रही है गाय, आज कुछ और खाया, आज बरसीम खिलाई, कल ज्वार खिला रहे हैं, परसों चने का हरा चारा खिला दिया, उससे अगले दिन कुछ ही नहीं था तो हो सकता है उसको गेहूं की जो तूड़ी आती है वो खिला दी, है ना, कुछ भी खिला दिया उसको, तो अलग अलग तरह की जो है फूड खा रही है गाय। दूसरी तरफ क्या है कि गाय है, आपने एकदम बंद एरिया में उसको पाल रखा है और उसको एक ही एक तरह का फूड दे रहे हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम उसको ड्राई फूड दे रहे हो आप, खाती जातू चारे। अब यहां पे एक चीज और आती है ए टू और ए वन वाली, उसमें अभी अपन नहीं जाने वाले, ठीक है, गाय और भैंस वाला डिफरेंस उसमें भी नहीं जाने वाले, मैं सिर्फ होममेड का उसका डिफरेंस बता रहा हूं। अब क्या होगा बेटा, ये जो घास खा रही है ना गाय, घास के अंदर होता है ए एल ए, ए एल ए इज वॉट, एल्फा लिनोइक एसिड, ये जो है ये ओमेगा थ्री है। गाय ने जब घास खाई तो गाय के पेट में भी बैक्टीरिया थे बहुत सारे, जैसे हमारे पेट में होते हैं कोलोन के अंदर अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, तो ऐसे ये बैक्टीरिया थे, इसको हम कह सकते हैं रूमिन का बैक्टीरिया, रूमिन जो होता है गाय का, इंटेस्टाइन जो होता है, ये इस एएलए से बनाएगा डीएचए और ईपीए। आपको पता है ये डीएचए और ईपीए ओमेगा थ्री के नाम से मार्केट में बेचे जाते हैं, अरबों रुपए का मार्केट है, लोगों को यह बिठा दिया दिमाग में ऐड कर करके कि फिश ऑयल के अलावा और किसी चीज से मिलता ही नहीं है, और फार्मा कंपनियां ये चाहती ही नहीं है कि आपको यह पता लगे कि दो चम्मच देसी घी खाओ आपको मछली के कैप्सूल से बढ़िया ओमेगा थ्री मिलेगा। और गजब की बात एक और सुनो, किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से पूछना, उससे नीचे वाला आदमी इस बात को नहीं समझ सकता जो मैं बता रहा हूं यहां, कि डीएचए और ईपीए जो है ये क्या क्या करते हैं बॉडी में, आपको पता है? DHA, EPA, K2

मैंने अभी अभी बताया ना, छोटा सा डिफरेंस बता रहा हूं आपको कि किस लेवल पे जाता है जब पढ़ाई करते हो। तो जो डीएचए है, डीएचए ईपीए और के टू, अभी मैंने बताया कि के टू बन जाएगा, तो अब होता क्या है, आपने देखा होगा हार्ट अटैक होते हैं, तो हार्ट अटैक होते हैं तो उन लोगों को कहते हैं भाई आपकी जो आर्टरीज है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है, आपके जो खून ले जाने वाली पाइप है, उसके अंदर कैल्शियम जम गया, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, इसलिए आपके ब्लॉकेज आ गया। ये तो सुना होगा ना, ब्लॉकेज आ जाता है बहुत सारे लोगों को, एथेरोस्क्लेरोसिस या और प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो के टू जो होता है ना, उसमें कैपेसिटी है, क्योंकि ये खून का थक्का बनाता है और के टू इज रिलेटेड टू ब्लड। तो याद रखना, के टू क्या करता है, ये आपकी ब्लड वेसल्स में जाएगा और जहां भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है ना, उसको डिसॉल्व करके और वापस ब्लड के अंदर भेज देगा। सोचो कितना जबरदस्त रोल है इसका। तो के टू जिसके अंदर जाएगा, उस आदमी को हार्ट डिजीज होने का खतरा कम हो जाएगा। के टू जिस आदमी के अंदर जाएगा, उस आदमी के ब्लॉकेज होने का खतरा कम हो जाएगा। और ये के टू वाला जो है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा होममेड घी के अंदर। दूसरे वाले में मिलेगा बट इतना नहीं मिल सकता। रीजन क्या है, ध्यान सुनना, K1 से K2 बन कब रहा था, जब दूध से दही बन रहा था, और डेयरी वाले दूध से दही बनने ही नहीं देते, वो तो दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। फिर आगे चलते हैं, दूसरी चीज दिखाता हूं आपको और भी गजब की, ठीक है। अब दूसरी चीज जो आएगी वो है EPA। अब ये जो EPA है, ये पेंटेनोइक एसिड और ये हेक्सानोइक एसिड, ये 5 और 6 कार्बन होते हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं, है ना, इसको डोकासा, इसको योकासा, ये नामों में मत घुसो आप, है ना, डोकासा हेक्सानोइक एसिड और योकासा पेंटेनोइक एसिड। ये दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों आपके, ये मानो बॉडी के एक ब्लेसिंग है ये मिली हुई। तो अब ये डीएचए जब बॉडी के अंदर जाता है घी के साथ, तो डीएचए जैसे ही आपकी बॉडी में गया, तो ये 3 जगह मेन जाएगा बेटा। पहले नंबर पे डीएचए पहुंचा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के अंदर जब जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, दोनों इंटेस्टाइन पता ही आपको। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें एक पार्ट होता है कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। अब ये जो कॉलन होता है, तो सबसे ज्यादा कॉलन की कैंसर से कौन बचाता है, किसी डॉक्टर से पूछना होगा, डीएचए। डीएचए जो है उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है बेटा। रीजन क्या है, डीएचए जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ये जो है ये इंटेस्टाइन में आपके सूजन नहीं होने देगा। तो हिंदुस्तानियों में एक बीमारी होती नहीं है आईबीएस, बहुत कम पेशेंट मिलेंगे इंडिया में आपको आईबीएस के, ठीक है, इरिटेशनल बाउल सिंड्रोम। उसमें क्या होता है कि पोटी जाते हैं तो आदमी को इरिटेशन होती है, बहुत परेशान रहता है आदमी, विदेशों में भरे पड़े हैं इसके पेशेंट। रीजन घी। उसके बाद दूसरी बात, ठीक है, कोलन, कोलन के अंदर ये कैंसर नहीं होने देगा। तीसरी गजब की बात, जो रेगुलर घी खाएगा उसके पाइल्स होने के चांसेस कम है, बवासीर बोलते हैं, ये नहीं होगा उस आदमी के। दूसरे नंबर पर ये डीएचए ब्रेन, ब्रेन का टॉनिक है बेटा, ये ब्रेन में जब जाएगा तो ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन से बात करता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। आपको पता है डीएचए इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, डीएचए इज डायरेक्टली एक्टिविटी। एक सेकेंड, फोन किसका आ रहा है, हाँ जी, तो देखो डीएचए इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, फिर से आ रहा है, कौन है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, हमारा जो ब्रेन होता है बेटा, हमारे ब्रेन के अंदर क्या होता है कि जो केमिकल्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिसको कहते हैं, जिससे हमारा ब्रेन एक दूसरे से बात करता है, जैसे ये न्यूरॉन है ये दूसरे न्यूरॉन से बात करेगा, तो ऐसे ही हमारे ब्रेन में एक फैक्टर होता है। तो एक बीमारी सुनी होगी आपने, अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होती है, एक एक बीमारी है जिसमें आदमी भूलने लग जाता है, तो अल्जाइमर हो गई। या फिर आपने देखा है विदेशों के अंदर आपको बहुत सारे बूढ़े लोग मिलेंगे जिनके हाथ ऐसे ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, चम्बक छल्लो वाला डांस करते हैं वैसे करके, लेकिन इंडिया में आपको बहुत कम बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे। रीजन घी है भाई उसका। रीजन क्या है कि ये जो अल्जाइमर है, और तो और डिप्रेशन तुम्हारी जनरेशन को तो स्पेशली, ओ खत्म जनरेशन, ध्यान से सुनो बात मेरी, ठीक है, तुम्हारी जनरेशन को तो स्पेशली ये पॉइंट सुनना चाहिए, डिप्रेशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एज बॉर्न डिमेंशिया, भूल जाते हो वो, ये सारी की सारी चीजें जो है ये BDNF नाम की एक चीज से एसोसिएटेड है। BDNF क्या होता है बेटा, एक फैक्टर होता है, फैक्टर मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, ये बात मेरी किसी डॉक्टर से करोगे तो ही समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं पता लगेगा, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर।

बीडीएनएफ जो होता है ना, बीडीएनएफ का लेवल अगर हाई है उस आदमी में अल्जाइमर होने के चांसेस कम है। बीडीएनएफ का लेवल अगर हाई है तो उस आदमी के अंदर मेंटल प्रॉब्लम होने के चांसेस कम है। बीडीएनएफ जिसके अंदर होगा वो आदमी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जैसे अभी आप खुश हो रखे हो। तो अब बीडीएनएफ जो है वो डीएचए से कनेक्टेड है। तीसरे नंबर पर जो डीएचए है, ये बेटा जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, ध्यान सुनना, प्रेगनेंसी में औरत को दो चीजें दे दो, एक डीएचए और एक ईपीए, एकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड। ये दो चीजें अगर औरत खा रही है प्रेगनेंसी में, उसके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट सुपर होगा बेटा, उसके बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट सुपर होगा। अब आप मेरे को ये बताओ, आज तो आप ये खोल खोल के इंस्टाग्राम की रील, ये आंटियां आती हैं बताने के लिए आपको, यू शुड ईट दिस, यू शुड ईट दैट, फलाना ढिमाना। किसने बताया हजारों साल पहले कि प्रेगनेंसी में घी के लड्डू खिलाओ? थोड़ा अपने पे भी भरोसा रखो यार। तुम 4 दिन 4 साल कॉलेज जाके अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हो, उन लोगों पे क्वेश्चन मार्क उठा रहे हो जिन्होंने तीन तीन चार चार हजार साल ऑब्जर्व कर करके चीजें रखी हैं। घी मजाक नहीं है, इसको आयुर्वेद में घृत रसायन कहा गया है। शतावरी का एक घी बनता है आयुर्वेद के अंदर। आपको पता है यूएसए में उसकी डिमांड इंडिया से ज्यादा है। ये जो जनरेशन आई है ना बीच में, इंटरनेट को गाइड मानती है, जो खत्म जनरेशन बोलता हूं मैं इसको, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इनको अब किसी ने बता दिया अश्वगंधा इज वेरी गुड फॉर बॉयज, अब टेस्टोस्टेरोन का लेवल पोते में और दादा में सेम हो रखा है। गूगल करके देखना, नई जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल इतना गिर गया है कि फ्यूचर में बच्चे कैसे होंगे यही पता नहीं। अब वो भर भर के अश्वगंधा खानी है, सबको अश्वगंधा शिलाजीत में एकदम से चमत्कार दिखने लग गया। रीजन, नई जनरेशन में जिस जिसने पढ़ लिया वो डरे पड़े हैं लड़के कि हमारा होगा क्या आगे। तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम ये जो फूड खा रहे होते, जो कंपनी के तुम विक्टिम बने हुए ना, दिस इज साइड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद के विक्टिम हो सबसे बड़े। खैर छोड़ो, उस बात में नहीं ले जा रहा, अभी वापस से आ जाओ। अब ईपीए जो है, डीएचए जो है, इनका ये फायदा हो गया, ब्रेन का हार्ट को फायदा दे रहा है, इंटेस्टाइन को फायदा दे रहा है। अब इनसे क्या होता है बेटा, डीएचए और ईपीए जब बॉडी में जाते हैं तो बॉडी में जाके इनसे केमिकल निकलते हैं, इनका जब कंजम्पशन होता है बॉडी के अंदर तो इनसे बनते हैं रिजोल्विंस। मैं फिर कह रहा हूं, जीके में ये नहीं पूछेगा, नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो, रिजोल्विंस। रिजोल्विंस जो है, घी खाया, घी से डीएचए और ईपीए मिला, वो डीएचए और ईपीए जिसके लिए तुमको ये कंपनियां झूठ बोलती हैं कि फिश ऑयल से ही मिलेगा। अब जैसे ही डीएचए और ईपीए मिला तुमको घी से, घर वाले घी की बात कर रहा हूं मैं, जैसे इससे मिला, घी अंदर जाके बनाएगा रेजोल्विन। अब जो रेजोल्विन है तुम्हें पता है क्या करता है? रेजोल्विन तुम्हारी बॉडी के जितने भी कैप्सूल वाले जॉइंट्स है, साइनोवियल फ्लूड वाले जॉइंट है, साइनोवियल फ्लूड वाले मतलब जिनमें मूवमेंट हो रहा है, अंदर क्या होता है, ऐसे बोन से बोन जुड़ी हुई है, चारों तरफ एक कैप्सूल है, साइनोवियल कैविटी है, उसके अंदर फ्लूड भरा हुआ है। साइनोवियल फ्लूइड को रीजनरेट करने की कैपेसिटी, साइनोवियल जॉइंट को प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी रेजोल्विन के अलावा धरती के किसी कंपाउंड में नहीं है। किसी ऑर्थोपेडिशियन से पूछ लेना ये बात कंफर्म करके, वो ये बोलेंगे कि साहब हम तो एक ही चीज जानते हैं, जॉइंट के अंदर इंजेक्शन लगा देंगे, गोल्ड कोलोइड का लगा देंगे, ये लगा देंगे, सब फेल है। इसीलिए देसी घी जब खाते हैं तो आदमी एकदम स्वस्थ रहता है, सालों तक चलती है उसकी बॉडी, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। और तो और डीएचए और ईपीए जो है ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे हैं बेटा। रीजन, ये इंफ्लामेशन नहीं होने देते। अब ध्यान से सुनना बात, डीएचए और ईपीए डेयरी वाले घी में भी होते हैं, बट जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का जो रेशो होता है वो बॉडी को जो चाहिए, जो बॉडी के लिए आइडियल है, वो होममेड घी में होता है, डेयरी वाले घी में वो रेशो नहीं होता। डेयरी वाला जो घी होता है उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अब उसके अंदर होगा डीएचए और ईपीए बट इतना नहीं होगा जितना देसी घी में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेयरी वाला घी है, चलो तुम ही बताओ हाँ भी, दोनों बराबर होते हैं क्या? कभी मत कहना कि दोनों बराबर होते हैं। ये माइक्रोफ्लोरा का कमाल है, फर्मेंटेशन जब नहीं होगा तो वो प्रोसेस हो ही नहीं सकती। ये ठीक ऐसे है जैसे आप सारे लोग क्लास में बैठे हो, इतनी देर से सुने जा रहे हो, एक तो आपने लेक्चर पढ़ा, एक इसकी कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, तो उसे डाउट हो सकता है कि उसने सब ले लिया। नहीं, गेटिंग माई पॉइंट?

0: चलो आगे चलते हैं।
1: सो ये सी जी देसी घ्यो की जानकारी, जेडी घर च बनता देसी घ्यो नाटकी डेयरी वाला। वैसे इतने तुम्हें पता भी जेडे देसी घ्यो बाजार चो अपन मिलते हैं, काफी प्रॉब्लम्स उन्होंने पाई गई हैं, तो कुछ देसी घ्यो जेडे उन्होंने दसिया, तो जिस तरीके ने जो घर लिया के लोग बनाते हैं तो जो एक्चुअल इम्पैक्ट है वो उन्ना ही वधिया है। DBNF की गलबात की गई है, अल्जाइमर ते होर जड़ियां बीमारियां हार्ट के नाल, चाहे हार्ट का फुलना हो, कोलन कैंसर। मेरे रिसेंटली एक बहुत वधिया ते यंग दोस्त है, उन्होंने कोलन कैंसर की प्रॉब्लम आई है, चलो परमात्मा की कृपा ना ठीक हो गए सब कुछ। पर यह है भी इस तरह दड़िया प्रॉब्लम्स ने जो ये दसते हैं कि भी वह भी ठीक हो जाए, घ्यो खाने के नाल जड़ी है वो बचा रहा जे तुसी अपने घर दे विच घ्यो बना के ते खांदे हो। सो आई थिंक वैसे तो आप बाजारों लिया खाने हैं, जदों का वो मैं परसनल जे सोचा तो काफ़ी समा पहला आप भी जो इतने आके तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के घ्यो ट्राई करने शुरू किए, तो देसी घ्यो तो भुल ही गए भी देसी घ्यो भी खाने वाली चीज़ होंगी कोई, तो उस टाइम के उत्ते शरीर के जड़िया चेंजिस वो डिफरेंट सीगियां, एकदम ही बंदा कमजोर लगन लग पाता जां तुहाडे शरीर दे विच एनर्जी जिहड़ी उन्नी नहीं रहिंदी। पर उस तों बाद जदों देसी घ्यो शुरू करता ते लगातार ऑन एंड ऑफ जां थोड़ा देर वास्ते बंद करो, बट मोस्टली जिहड़ा वो खांदे रही दा ते उहदे नाल वाकई बड़ा अपने आप नूं तुहानूं एनर्जी रहिंदी है ते तुसीं वधिया फील करदे हो। ते आई होप भी तुसीं प्रोग्राम पसंद कीता होएगा, देसी घ्यो दे नज़ारे जे कहीए आपां ते अज के प्रोग्राम दे विच काफी वधिया तरीके दे नाल समझाया गया, क्योंकि ये जिहड़ा प्रोग्राम जो समझा रहे सी कि बेसिकली ये IAS दे जिहड़े स्टूडेंट हुंदे ने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले बच्चे जिहड़े, उन्हां वास्ते बने हैं, ना कि साडे समझण वास्ते। बट क्योंकि अजकल हर बंदे नूं सब कुछ इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है वो वधिया तो वधिया चाहीदी है, ते बलराज जी का भी मैसेज आया, थैंक यू वेरी मच बलराज जी, तुसीं प्रोग्राम नूं पसंद कर रहे हो ते इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है तुहानूं वधिया लग रही है, ते इसे तरीके ना होर भी प्रोग्राम दे विच खबरां ते गल्लां बातां, क्योंकि खबरां ते आ ही सकदियां ने बट गल्लां बातां जिहड़ियां ने वो नाल नाल आपां ऐड करदे रहिंदे आ। सो सबरंग रेडियो सो ये प्रोग्राम जिहड़ा जी इसे तरीके नाल अगे चलदा, एक छोटी जी ब्रेक लैंदे आ ते ब्रेक तो बाद फिर वापस मिलते हैं, बाकी दिन खबरें गल्ला बात इसे तरीके नाल शेयर करते हैं तुहाडे नाल।
2: Special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrang.ca or call 403-400-0203.
3: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca।
4: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
5: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
4: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
5: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देती है मुकम्मल केयर।
4: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
5: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
4: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
5: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
6: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है

0: एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन. चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं. हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में. ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक. अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए. आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी. मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 7 to 8 PM, संडे 1 to 5 PM.
1: एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड. स्टूडेंट वीजा, विस्टर वीजा, सुपर वीजा, LMIA applications, फैमिली इमिग्रेशन, प्रोविंशियल नॉमिनी एप्लीकेशन, सिटीजनशिप एप्लीकेशन विच लंबा तजर्बा ते महारत रखता है. तो हॉडी सहूलत लई मैं मनिंदर सिंह ढिल्लों अते इंद्रजोत कौर ढिल्लों इको छत हेठ इमिग्रेशन अते इंश्योरेंस दीयां सेवावां प्रदान करते हैं. सानू संपर्क करने लई 403-225-1111. मनिंदर सिंह ढिल्लों, एशिया पैसिफिक इमिग्रेशन कंसल्टिंग लिमिटेड.
2: रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट.
1: 403-225-1111.
0: From the heart of Calgary to every corner within a 250-kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
3: बिल्कुल जी, sabrang.ca तो विजिट करके देख सकते हो कितनी बढ़िया ते खूबसूरत वैबसाइट ते इनफॉरमेशन सारी तुहानू उत्थे मिलदी है. बट उहदे नाल नाल तुहानू दसदी है वी मैच हाले तक भी 67 मिनट हो चुके ने मैच नू शुरू होया ते कैनेडा ते साउथ अफ्रीका हाले भी 0-0 ते खेल रहे है. हालांकि कैनेडा वालों ज्यादा अटैक किए जा रहे ने लगातार, ते ताकि मैं तुहानू अपडेट भी करता रहा नाल, क्योंकि मैच चल रहे है ते उहदे बारे इनफॉरमेशन आनी चाहीदी है. काफी पूरा उत्साह जरा लोग देखा जा रहा है कैनेडा दे विच. तुहानू पता है कि भी ये वर्ल्ड कप हो रहा कैनेडा, US ते मैक्सीको, जिथे कि गल्ला पता इन्हां दे बिजनेस दीआं ते उन्नीआं वधीआ नहीं हले सिरे चढ़ रहीआं, पर वर्ल्ड कप जरा जरूर हो रहा जिथे कैनेडा की टीम सो फार काफी अगे वध गई है. ते अज दा मैच जिस तरीके नाल जे मैं ओवरऑल देखा ते काफी स्ट्रोंग लग रही है एज कंपेयर टू जेड़े साडे दूजे साउथ अफ्रीका की टीम दे कंपैरेटिवली. कैनेडा की टीम जिहड़ी है काफी स्ट्रोंग तरीके नाल काम कर रही है. सो प्रोग्राम अगे वधे वधे आपां अगे वधे वधे कई ऐसियां खबरां ते गल्लां बातां जिहड़ियां ने ओह तुहाडे नाल शेयर करदे आं. ते नाल नाल मैं लाइन अप करदे आं, कई वारी इस तरह दीआं खबरां आ जांदीआं तो दिल करदा वी नहीं ए खबर दे नाल तुसीं दूजी खबर जिहड़ी है ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ. ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟਵਿਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ. ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ. प्रोग्राम दे विच मिलते हैं इस छोटी जी खबर तो बाद जी.
4: फुटबॉल वर्ल्ड कप में कई टीमों के आगे बढ़ने की उम्मीदें अब लगभग खत्म होती जा रही हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक देश ने सबको हैरान कर दिया है, वो है केप वर्डे, और इसकी टीम को ब्लू शार्क्स भी कहा जाता है. टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए हम राजधानी क्राया में मौजूद बोला प्रा फेंटे एकेडमी पहुंचे, ताकि ये जान सके कि ये देश यंग टैलेंट को कैसे तैयार करता है और कैसे निखारता है. फुटबॉल फैसिलिटीज, जैसे कि ऐसी आर्टिफिशियल पिच जिसे फीफा ने फंड किया है, ये फुटबॉलर बनने वाले खिलाड़ियों को मॉडर्न प्रैक्टिस और उनकी स्किल्स को बेहतर बनाने में मदद करता है.
5: दो
4: वेटरन कोच सिल्वियरा नेडियो को यहाँ हर कोई जानता है। खिलाड़ियों के खुले मैदान में खेलने से लेकर उसके

0: दुनिया में मौजूद आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल करने तक सिविएरा ने सब देखा है और साथ ही खिलाड़ियों के खेल को और शार्प बनाया है।
1: ये ट्रेनिंग सेंटर इस बात का सबूत है कि इसे भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मैंने यहाँ 2010 में काम करना शुरू किया था। इसे खुले हुए तब 2 साल हो गए थे। मैंने इस अकेडमी को शुरू किया और उस वक्त वो बच्चे 8 या 9 साल के होंगे जो आज ब्लू शार्क्स टीम का हिस्सा है। मैंने यहाँ ट्रेनिंग देना कभी नहीं छोड़ा। मैं यहाँ 15 सालों से ट्रेनिंग दे रही हूँ। मैंने किसी दूसरी जगह खिलाड़ियों को ट्रेन नहीं किया।
0: एकेडमी के सबसे अच्छे खिलाड़ियों में से एक हैं 12 साल के जान लुका। लुका इतनी कम उम्र में कई सारे प्राइजेस जीत चुके हैं। उनका सपना किसी दिन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का है।
2: फुटबॉल खेलना हमेशा मेरे लिए सपना रहा है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने कई खिलाड़ियों को खेलते देखा। इससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने खेलना शुरू किया। मैंने प्राफेंटे एकेडमी ज्वाइन करने का फैसला किया। जिस प्लेयर ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया वो है मेसी। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। एकेडमी के बिना मैं टूर्नामेंट्स नहीं खेल पाता। मैं इतने सारे प्राइजेस नहीं जीत पाता। मुझे लगता है कि एकेडमी के बिना मैं उस मकान पर नहीं पहुँच पाता जहाँ मैं आज हूँ।
0: लुका जैसे कई खिलाड़ी केप वर्ल्डे के फुटबॉल का भविष्य हैं, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज के बाद भी फुटबॉल एक्सपर्ट्स का मानना है कि देश में इस खेल के विकास के लिए अभी और कोशिश करने की जरूरत है। फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट का कहना है कि केप वर्ल्डे का इस वर्ल्ड कप में खेलना इन चिंताओं को दूर करने का एक मौका बन सकता है।
3: ये सिर्फ स्थानीय स्तर पर फुटबॉल के लिए मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि वर्ल्ड कप में खेलने से एक और फायदा यह है कि हम फीफा से मिलने वाले बोनस के एक हिस्से को स्थानीय स्तर पर फुटबॉल को और विकसित करने में इन्वेस्ट कर सकेंगे। हम ट्रेनिंग बढ़ाएंगे, खासकर फुटबॉल एकेडमी में। लोकल कॉम्पिटिशन को बेहतर बनाएंगे। इस तरह से हम वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने का फायदा उठा सकते हैं।
0: कॉम्पिटेटिव प्रोफेशनल लीग न होने की वजह से ये डर है कि भविष्य के कई स्टार खिलाड़ी देश में रहने की बजाय विदेश जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बीबीसी संवाददाता पॉल ये की रिपोर्ट।

0: ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
1: ਹਮਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਨੋ ਜੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਕੇ ਭੀਤਰ ਬਸਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਵਾਇਪ ਔਰ ਕਲਿੱਕ ਕੀ ਰਫਤਾਰ ਸੇ ਚਲਤੀ ਹੈ ਕਿਸੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਨਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜੈਸੇ ਸਕਰੀਨ ਮੇਂ ਸਿਮਟ ਕਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਸੇ ਦੂਰ ਔਰ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਫੀਡਸ ਕੇ ਪੀਛੇ ਹਮ ਔਰ ਆਪ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਆ ਹਮ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੇ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ आइए हमारे साथ मिलने उनसे जिन्होंने अपने फोन से बनाई दूरी और हमसे साझा की अपनी डिजिटल डिटॉक्स डायरी दिव्या आप डिजिटल डिटॉक्स करने जा रही हैं तो डिजिटल डिटॉक्स जर्नी पर जाने का ख्याल कैसे आया आपको
2: कुछ टाइम पहले मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही ज्यादा फोन यूज कर रही हूँ और मुझे कहना चाहिए कि मैं फोन यूज नहीं कर रही हूँ फोन ही मुझे यूज कर रहा है एंड मेरा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है 8 घंटे के करीब जो कि बहुत ज्यादा है जब मैं ऑफिस में हूँ तब भी लैपटॉप मेरे सामने है मेरे सामने काम है तब भी मैं अपना फोन उठाकर ये देख रही हूँ किसी ने मुझे मैसेज किया कॉल किया सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे डिजिटल डिटॉक्स पे जाना चाहिए शुरू करने के लिए 48 आवर्स से मैं पहले अपने फोन को अपने आप से दूर रखूंगी अब मैं इस फोन को यूज करने वाली हूँ इन 2 दिनों में मैं सिर्फ इसी फोन को यूज करूंगी जिसमें मेरी सिम निकाल कर इसमें से मैं इसमें डालने वाली हूँ ये मेरा फोन है जो कि अब मुझसे दूर रहेगा और ये फोन मेरा डिजिटल डायरी की तरह काम करेगा इसमें मैं अपने 2 दिन पूरे रिकॉर्ड करूंगी कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ मुझे कैसा फील हो रहा है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा

ऐसा लग रहा है कि मेरे पास दुनिया का सारा टाइम है. एंड द मोर दिस डे इज पासिंग, मुझे लोनली और डिप्रेस सा फील हो रहा है. लाइक आई डोंट हैव एनीवन्स नंबर, आई डिडंट सेव एनीवन्स नंबर एक्सेप्ट द फैक्ट दैट मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर याद है, प्लस आई हैव 2-3 इमरजेंसी नंबर्स रिटन ऑन द नोटपैड. बट किसी ने मुझे कॉल ही नहीं किया. लाइक समहाउ हमारा फोन हमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट फील कराता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक. इट मतलब जितना हमें लग रहा है कि हम इन सब चीजों को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा एग्जैक्टली में कुछ भी नहीं है. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन जस्ट चिल एंड यू कैन एक्चुअली फोकस ऑन योर थिंग्स. एंड अभी इतना सब बोलने के बाद फाइनली आई विल डू द थिंग जिसके लिए मैंने ये सब कहानी करी है.

0: नॉर्मली जब भी मुझे ऐसा कुछ पढ़ना होता है तो मैं क्या करती हूँ, जस्ट लाइक एनी अदर जेन ज़ी, आई गो ऑन चैट जीपीटी, आई गिव इट द एंटायर पीडीएफ एंड द चैप्टर जो भी होता है, एंड देन आई आस्क इट कि भाई मुझे इसकी समरी दे दो, मुझे इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा दो एंड ऑल. बट आज मेरे पास वो ऑप्शन नहीं था, तो आई थॉट कि आज हम खुद से पढ़ेंगे, ऑप्शन नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड, बट देन आई रियलाइज कि माई ब्रेन इज एक्चुअली रोटन, लाइक नेक्स्ट लेवल रोटन. ये वो सेम दिमाग है जो डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन सोल्व करता था, लाइक लिटरली. जैसे जैसे गर्मी की, जैसे बचपन में गर्मी की छुट्टियों में लाइक दोपहर में मम्मा सो जाती है एंड फिर पूरा बोरिंग हो जाता है ना कि अभी क्या करें, मम्मा भी सो गई, मम्मा को परेशान नहीं कर सकते और पापा भी नहीं है, पापा भी अपने ऑफिस गए हैं तो अभी करें क्या. मतलब वो जो वो वाला जो बोरियत होता है ना, जो वो वाली बोरिंग एंड अजीब सी फीलिंग होती है ना, आई एम हैविंग दैट फीलिंग राइट लिटरली एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू. When I came here, I thought that I will just study for my exam and I will give my exam and all and all. And I just somehow kept giving myself an excuse that I'm busy. But now I'm realizing that I'm not busy. I was never busy. I was like, we can never busy for something which is important for us. Feel that I am very important for people, that people are very important for me, that replying to them in 2 seconds is very important, that checking my phone after every minute is very important, but these things are never an excuse to avoid something which is necessary for you or which is important for you or which will actually help you build yourself.
1: Hi Sarika.
2: Good morning, Divya.
1: Good morning, Sarika.
2: So it's been 48 hours and this is your phone finally. Kaisa lag raha hai?
1: Acha lag raha hai. But abhi itna zyada craving nahi ho rahi thi mujhe. To abhi iska kaam alag ho jayega. But acha lag raha hai.
2: To ab aap isko use karna chahengi ya nahi?
1: Use karna chahungi par pehle ki tarah, matlab jaise pehle kar rahi thi waise nahi, alag tarike se. Can I switch it off?
2: Haan.
1: My phone. Abhi ye ek minute.
2: To kaun sa app hai jis pe sabse pehle jana chahengi?
1: व्हाट्सएप पे.
2: क्यों?
1: क्योंकि मम्मी को वीडियो कॉल करनी है और चेक करना है कि किसने क्या किया है. चल गया. कुछ ना बताऊंगी बाद में. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, कुछ चीजों में खराब भी रहा थोड़ा. नींद बहुत अच्छी आई, ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा. और मैंने फाइनली बुक स्टार्ट की, पढ़ाई स्टार्ट की, ये सब एक्सपीरियंस अच्छा रहा. पर कैश नहीं है या फिर पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, ऊबर बुक नहीं कर पा रही हूँ, इन सब चीज़ों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे. एट सम पॉइंट्स मुझे बहुत लोनली फील हो रहा था क्योंकि मैं अपने दोस्तों, जो ये कीपैड फ़ोन था उसमें नंबर नहीं थे किसी के भी, तो द ओनली पीपल हु आर कॉलिंग मी मैं उन्हीं से बात कर पा रही थी. तो जो कुछ कुछ पॉइंट पे लग रहा था कि मैं इसको कॉल कर लेती हूँ या वीडियो कॉल कर लेती हूँ या फिर कुछ देख लेती हूँ, मतलब लाइफ में क्या चल रहा है उनकी मुझे पता नहीं है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है मैं उन्हें बता नहीं पा रही हूँ. बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल आइसोलेटेड हो गई हूँ चीज़ों से, तो वो चीज़ थोड़ी सी लग रही थी. बट एट द सेम टाइम आई कुड स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ और मैं काफ़ी चीज़ें जो मतलब मैंने बहुत टाइम से पेंडिंग रखी हुई थी मैं उनको ओपन कर पाई, बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस कर पाई, तो वो चीज़ अच्छी थी. 8 आवर्स तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, उस चीज़ पर चले जाना इज़ नॉट वर्थ इट. एंड regret is the worst thing to do in life, but in reality we have a lot of time and once you leave your phone you will realize ki sari duniya ka time tumhare paas aa gaya hai. So yes,
3: so yes, ji, this

0: चिकन पॉक्स वैक्सीन में इन खतरनाक बीमारियों को पैदा करने वाले मगर मरे हुए या कमजोर किए हुए वायरस या उनके छोटे टुकड़े होते हैं जो शरीर को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते, बस इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा झंझोड़ते हैं ताकि वो एंटीबॉडी बना सके और इस वायरस के भयानक रूप से लड़ना सीख सके। मिसाल के लिए मीजल्स यानी खसरा, जो एक वायरल बीमारी है जिसकी वैक्सीन 1963 में आई थी। खसरे के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीका दिए जाने से पहले हर साल करीब 26 लाख जाने जाती थी। साल 2024 में ये आंकड़ा गिरकर 95,000 हो गया। वजह, एक छोटा सा वैक्सीन। और अगर ये वैक्सीन सभी को सही वक्त पर दिया जाए तो ये संख्या शून्य भी हो सकती है। जैसे भारत में पोलियो और दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स के मामले अब नहीं है। वजह फिर वही, एक छोटा सा वैक्सीन। लेकिन बेहद जरूरी मीजल्स वैक्सीन के बारे में ये अफवाह उड़ी कि इससे ऑटिज्म होता है। क्या वाकई ऐसा है?
1: मीजल्स वैक्सीन देने का समय और ऑटिज्म के जो सिम्टम्स होते हैं वह समय बिल्कुल सेम होता है, अराउंड 9 to 10 months, एंड दैट इज व्हाई ये मिथ अभी भी प्रचलित है, पर यह बिल्कुल गलत है। मीजल्स वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता।
0: ऐसी ही एक और खतरनाक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स या चेचक। इसका आखिरी मामला 1977 में देखा गया और उसके 2 साल बाद इसकी वैक्सीन बंद कर दी गई। अब भारत भी पोलियो मुक्त हो चुका है, तो क्या इसकी वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? पोलियो जैसी और बीमारियां जो इराडिकेट हो चुकी हैं या अब ज्यादा नहीं दिखती, उनकी वैक्सीन अब भी क्यों दी जाती है?
1: बीमारी इसलिए कम दिखती है क्योंकि जंतु तो अभी भी है, वो बैक्टीरिया वायरस अभी भी है, पर क्योंकि वैक्सीनेट हुआ है बच्चा तो बॉडी को पता है कि उस बीमारी से कैसे फाइट करना है, इसीलिए ये बीमारी देखी नहीं जाती। पर अगर वैक्सीन नहीं दिया जाए तो पक्के से वह बीमारियां फिर से शुरू हो जाएगी।
0: तो इससे साफ है कि बीमारी भले ही ना दिखे लेकिन टीकाकरण फिर भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी वजह से पेरेंट्स वैक्सीन की अपॉइंटमेंट लेना भूल जाएं या पहले से शेड्यूल की हुई अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़े तो क्या किया जाए?
1: पैनिक नहीं करना चाहिए, हम मेडिकली बोलते हैं कि कैच अप वैक्सीनेशन, रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, पर जहां से आपने उसे छोड़ा वहीं से आप अब आगे बढ़ सकते हैं। पर जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी आपको समझ आए कि आपकी छूट गई है, आप तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन के पास पहुंच जाइए।
0: वैक्सीन देने के बाद बच्चों को बुखार आ सकता है, इंजेक्शन वाली जगह पर हल्की सूजन दिख सकती है, थोड़ा दर्द हो सकता है, लेकिन क्या जरूरी है कि ये सभी रिएक्शन दिखें? और क्या इन रिएक्शंस का दिखना ही वैक्सीन के काम करने का सबूत होता है?
1: माइल्ड फीवर हो सकता है, एज के अनुसार और वेट के अनुसार बच्चे को पैरासिटामोल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, या आपके बच्चे को जहां इंजेक्शन लगा है थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है तो आप बर्फ से सिकाई भी कर सकते हैं। और अगर रोटा वायरल वैक्सीन दी गई है तो कभी कभार बच्चों को इवन हल्का सा लूज मोशन भी हो सकता है। ये सभी एक इंडिकेशन है कि हाँ वैक्सीन काम कर रही है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर ये रिएक्शंस ना हो तो वैक्सीन ने काम नहीं किया। वैक्सीन फिर भी काम कर रही है आपके बॉडी में अगर ये रिएक्शंस एक्सट्रीम, जैसे कि बहुत तेज बुखार है, 103-104 डिग्री तक बुखार है, या फिर बच्चा रोए जा रहा है कंटिन्यूसली 2-3 घंटे रोए जा रहा है, या फिट्स आ रही है, या इंजेक्शन की जगह बहुत बड़ी सूजन आ गई है, आपको लगता है कि फीवर 2-3 दिन के बाद भी जा नहीं रहा है, तो आपको पीडियाट्रिशियन के पास जरूर पहुंचना चाहिए।
0: साइड इफेक्ट्स के अलावा वैक्सीन से जुड़ी एक और चिंता लोगों को सताती है, वो ये कि उनमें हानिकारक केमिकल्स होते हैं। अब ये बात सच है कि वैक्सीन को सुरक्षित और कारगर बनाने के लिए उनमें मरकरी, एल्युमिनियम और फॉर्मल्डिहाइड जैसे तत्व डाले जाते हैं और बड़ी मात्रा में ये नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में। वैक्सीन में इनका बहुत कम अंश होता है जिससे शरीर को हानि नहीं होती। हालांकि अमेरिका और यूरोप में मरकरी से बने प्रिजर्वेटिव थाइमरोसोल का इस्तेमाल वैक्सीन, खासकर बच्चों के वैक्सीन में नहीं किया जाता, लेकिन WHO के मुताबिक इसका इस्तेमाल सुरक्षित है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इन केमिकल्स पर निर्भर रहना ही क्यों? क्या कुदरती तरीके से मिलने वाली इम्यूनिटी काफी नहीं? हो सकती है, लेकिन उसके लिए शरीर को भारी कीमत चुकानी होगी, उस बीमारी के सबसे विकराल रूप का सामना करना होगा। ये वही बात होगी कि सेना को बॉर्डर पर बिना किसी ट्रेनिंग के लड़ने भेज दिया गया।

0: और चूंकि इम्यून सिस्टम उस वक्त इस भयंकर बीमारी से लड़ने में व्यस्त होगा, दूसरी बीमारियां चुपके से हमला बोल सकती हैं। जैसे मीजल से पीड़ित हर 20 में से एक बच्चे को निमोनिया हो सकता है और ये बच्चों में मौत की सबसे आम वजह है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है या वो डीएनए को बदल देते हैं या जहरीले होते हैं तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजें। बच्चों की सेहत से जुड़े एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।
1: कॉल करो 587-360-6890।
2: थोड़े परिवार की सेहत साड़ी जिम्मेदारी।
3: हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਟਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਬਰੰਗ ਰੇਡੀਓ 94.7 FM ਤੇ
1: आई लाइक इट यहाँ कोई आपको जज नहीं करता और बहुत सारे पुरुषों में मुझे असहज महसूस होता है सस्ता सामान मिलता है ये आइडिया काफी अच्छा है केवल महिलाओं के लिए
2: ये है जर्मनी के बॉन शहर का एक फ्ली मार्केट फ्ली मार्केट यानी वो जगह जहाँ लोग अपना इस्तेमाल किया हुआ पुराना सामान बेचते हैं यूरोप के कई देशों में हर वीकेंड ऐसे बाजार लगते हैं और लोग इनमें जाने के लिए काफी उत्साहित रहते हैं लेकिन इस फ्ली मार्केट की खास बात यह है कि यहाँ केवल महिलाएं ही सामान बेच सकती हैं और अगर आपको यहाँ से कुछ खरीदना हो तो आपको 5 यूरो यानी करीब 550 भारतीय रुपए मार्केट में एंट्री के लिए देने होंगे मार्केट वो भी सिर्फ महिला दुकानदारों वाला ये बात थोड़ी अनोखी है इसे देखने के लिए हमने फ्रांसेस्का को फॉलो किया जो यहाँ अपनी छोटी सी दुकान लगाकर पुराना सामान बेचने वाली हैं। पहले तो तपती धूप में फ्रांसेस्का अपना सारा सामान उठाकर मार्केट वाली जगह ले जाएंगी और फिर शुरू होगी दुकानदारी फ्रांसेस्का के पास कई सारे कपड़े घर के जरूरी सामान ऑर्गेनाइजर्स फाइल्स इत्यादि मौजूद हैं जिन्हें वो बेचना चाहती हैं
3: When I look at my niece, for example, she is almost 14.
4: मैं अपनी भांजी की बात करूं तो वो 14 साल की है और उसके स्कूल में सेकेंड हैंड सामान लेने को प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि ये पर्यावरण के लिए सही है नौजवान इसे कर रहे हैं क्योंकि ये कूल है और पर्यावरण के लिए सही है और बूमर स्नैपशन यानी सस्ते सामान के लिए
2: महिलाओं ने बताया कि फ्ली मार्केट कल्चर के पीछे यहाँ के माता पिता का बच्चों को बचपन से ही खरीदने बेचने का गुणा भाग सिखाने की प्रेरणा भी है
4: हम शायद 6 या 7 साल के रहे होंगे जब पड़ोस के बच्चों के साथ हमने आइसक्रीम बेचने की सोची लेकिन आइसक्रीम कैसे देनी है वो नहीं पता था तो हम सब चौराहे पर एक आइसक्रीम की दुकान पर गए और उनसे आइसक्रीम कौन मांगे और उन्होंने भी हमें मुफ्त में वो दे दिए जबकि उन्हें भी आइसक्रीम बेचनी थी और हमें भी
2: कई इंट्रोवर्ट लोगों के लिए ये नए लोगों से मिलने का एक तरीका भी है
5: जब मैं ऐसे बाजारों में सामान बेचती हूँ तब मैं नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि ऐसे बाजारों में बहुत लोग होते हैं और मैं सोचती हूँ अरे बाप रे इतने लोग लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप लोगों से बात करेंगे तो आप जानेंगे कि आखिर सब इंसान ही तो हैं किसी को देखकर आप मुस्कुराते हैं कोई आपको देखकर यही छोटी छोटी चीजें तो मायने रखती हैं
2: शॉपिका भी यहाँ सामान खरीदने आई हैं। उनकी पैदाइश जर्मनी की ही है और वो यहाँ कोब्लेंस शहर में सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही हैं।
6: We know, like the gender pay gap, there are men running...
7: महिलाओं के लिए जेंडर पे गैप एक मसला है ज्यादातर पुरुष ही कारोबार चला रहे होते हैं महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अलग ढंग से पैसे मिलते हैं इसलिए जब मैं देखती हूँ कि महिलाएं कुछ बेच रही हैं और आप उन्हें खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये करके आप उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं ये अच्छा आइडिया है
8: I think it's a good idea, yes.
2: अब वापस चलते हैं फ्रांसेस्का के पास और उनसे पूछते हैं कि उनकी आज कितनी बिक्री हुई
4: हाँ ठीक ही था बहुत ज्यादा लोग तो नहीं थे शायद गर्मी की वजह से या फिर यहाँ कल भी एक फ्ली मार्केट था तो शायद लोगों ने सामान खरीद लिया और अब उन्हें और सामान की जरूरत नहीं है
2: अब फ्रांसेस्का की तो उतनी बिक्री नहीं हो पाई लेकिन आपको क्या लगता है क्या फ्ली मार्केट का ये कल्चर भारत में काम करेगा
0: ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਸਮਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨੋ ਫ੍ਰਿਲ ਤੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਐਡ ਕਾਫੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਉਹ

0: गिरफ्तार देने के लिए प्रोसिक्यूशन को ठोस सबूत पेश करने पड़ेंगे। जब सिया के बॉयफ्रेंड चेतन को लेकर आशुतोष से पूछा गया तो वो कहते हैं कि वो दोनों दोस्त हैं और एक दोस्त से मिलने को लेकर अगर ये निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि उन्होंने चेतन की हत्या की है तो ये सही नहीं है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि चेतन और सिया सिर्फ दोस्त हैं और उनके पिता ये मान चुके हैं कि उन्हें सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पता था, तो वकील ने तर्क दिया कि सिया के पिता ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट पुलिस के आगे नहीं दी है। वो आगे कहते हैं कि उन्हें चेतन के परिवार के साथ सहानुभूति है, लेकिन संविधान के आर्टिकल 22 के मुताबिक हर व्यक्ति को फेयर ट्रायल का हक है। आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि एक बार पुलिस अपनी चार्जशीट ट्रायल कोर्ट के सामने पेश करे तो वो लोग अपनी क्लाइंट यानी सिया को ट्रायल कोर्ट में डिफेंस करेंगे और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो भी बातें मीडिया में चलती हैं जरूरी नहीं वो कोर्ट में भी एडमिसिबल हों। जैसे सिया के पिता ने कैमरा पर यह माना कि उन्हें सिया और चेतन के रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन वकील का कहना है कि कोर्ट में वही माना जाएगा जो बयान वो दर्ज करवाएंगे पुलिस के आगे। तो फिलहाल इस केस में कई ऐसी कानूनी तिकड़मबाजी देखने को मिलेगी जिससे ये हो सकता है कि कोर्ट में ये पूरा मामला ही पलट जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि जो कौन डिटेल्स की बात मीडिया में चल रही है या जो सीसीटीवी फुटेज में चेतन हुडी पहने लोहगढ़ फोर्ट पर दिख रहा है पुलिस उसे कोर्ट में प्रूव कर पाती है और क्या पुलिस सिया और चेतन को कोर्ट में दोषी ठहरा पाती है। अब सोनम रघुवंशी के मामले को ही देख लीजिए। इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी पर भी अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप था। सोनम और राजा 11 मई 2025 को शादी के बाद हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। वहां सोनम पर आरोप लगा कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और लाश खाई में फेंक दी। इस मामले में भी काफी हंगामा हुआ था लेकिन सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई थी जिसके बाद से वो फिलहाल जेल से बाहर हैं। वहीं राजा के भाई विपिन रघुवंशी अब भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो सके। अब देखना यह होगा कि सिया गोयल के केस में कोर्ट में क्या होता है। इस मामले में हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी जानकारी सामने आएगी खबर गांव आप तक जरूर पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।
1: सोचने वाली गल है कि बड़े केसेस होते हैं, बहुत कुछ अत्याचार जड़ा होता है, बट क्योंकि ये अमीरां दा केस ने ते इनू हाई प्रोफाइल बना के सुर्खियां दे विच कमाया जांदा वध तों वध ताकि आम चीजा तो ध्यान जड़ा लोकां दा हटदा रहे ते इहो जिहे केसेस जड़े ने वध तों वध सामने आन ते हाईलाइट जड़े आ हुंदे रहिंदे आ। पर वैसे तो आप घट गलबात की बट फिर भी क्योंकि गलबात जी होंगी रहनी चाहिए है ताकि पता लगता रहे भी की कुछ चल रहा। सो तुम दस दी भी यह प्रोग्राम तुम मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे शाम को 7 to 8 तो संडे 1 बजे तो लैके 5 बजे तक सुनते हो। अज का प्रोग्राम जरा 5 बजे तक चलेगा तो कैनेडा की टीम कनेडियंस एक बार बहुत बहुत बधाई वंस अगेन क्योंकि कैनेडा फीफा वर्ल्ड कप के अगले राउंड के पहुंच गया 32 to 16 के आ गए है। पहली टीम जी कैनेडा बनी है जिन्हें अज साउथ अफ्रीका 1-0 हरा के ते अगे अपनी जगह जी सुरक्षित कर ली। सो एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक लें, ब्रेक लैके तो फिर वापस मिलते हैं बाकी दी खबर ते गल्ला बताते हैं।
2: फीमेल फैमिली फिजिशियन दा स्वागत करता है।
3: गर्मजोशी, समझदारी ते प्यार नाल ओ तुहाडे परिवार नू कंफर्टेबल ते वेल केयर्ड फील करवाउण लई हमेशा तैयार है।
2: हुण तुसी उनां नाल इंग्लिश, हिंदी, उर्दू ते पंजाबी विच वी गल्लबात कर सकदे हो ताकि तुसी घर वर्गा एहसास महसूस करो।
3: नवे पेशेंट्स नू एक्सेप्ट हो रहे ने, अज ही अपने परिवार लई फैमिली डॉक्टर सिक्योर करो।
2: कॉल करो 587-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, वॉक-इन्स सवेरे 9 बजे तो शाम 6 बजे तक।
3: सानू मिलो किंग्स व्यू बुलेवर्ड ते या कॉल करो 587-360-6890।
2: थोड़े परिवार दी सेहत साडी जिम्मेदारी।
4: हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।

0: ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मखर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।

0: launches to community celebrations. We don't just promote your business. We create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sebrang Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sebrang.ca or call 403-400-0203.
1: ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ 1400 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਗਰੀਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਿਆ ਵੈਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਹਾਲੇ 51,000 ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਬਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਖਬਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ।
2: सोचिए एक ऐसा भूकंप जो कुछ ही सेकंड में पूरे शहर को मलबे में बदल दे, हजारों लोग अपने ही घरों के नीचे दब जाएं, हर तरफ सिर्फ धूल, चीखें और मदद की पुकार सुनाई दे। फिलहाल दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। वेनेजुएला में आए दो बेहद शक्तिशाली भूकंपों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता के भूकंप ने कई शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि सैकड़ों इमारतें देखते ही देखते जमीन पर आ गईं। जिन घरों में कुछ मिनट पहले तक लोग अपने परिवार के साथ बैठे थे, वहीं अब सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कराकास के पास मौजूद तटीय शहर ला ग्वायरा में हुई है। यहाँ 100 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह ढह गई हैं। कई बहुमंजिला अपार्टमेंट पलक झपकते ही मलबे में बदल गए। सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और कई इलाकों में लोगों के पास रहने के लिए छत तक नहीं बची। अब तक सामने आए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 920 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 3,360 से ज्यादा लोग घायल हैं और सरकार का कहना है कि सैकड़ों लोग अब भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता लापता लोगों को लेकर है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक 50,000 से ज्यादा लोगों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS का अनुमान और भी डराने वाला है। एजेंसी का कहना है कि जैसे जैसे मलबा हटेगा, मृतकों की संख्या 10,000 से भी ऊपर जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये हाल के सालों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक साबित होगी। भूकंप के कई घंटे बीत जाने के बाद भी राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारी मशीनों की कमी की वजह से कई जगहों पर मलबा हटाने का काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोग अपने हाथों से ईंटें हटाते नजर आ रहे हैं। किसी के हाथ में फावड़ा है, किसी के पास सिर्फ लोहे की रॉड। हर किसी के बस एक ही कोशिश है कि शायद मलबे के नीचे दबा उनका अपना कोई जिंदा मिल जाए। इसी बीच राहत दल ड्रोन, हीट स्कैनर और खोजी कुत्तों की मदद से लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बचाव कर्मियों का कहना है कि कई जगहों से अब भी जिंदा लोगों के होने के संकेत मिल रहे हैं। यही वजह है कि हर मिनट बेहद कीमती माना जा रहा है। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। विनाशकारी भूकंप के बाद शनिवार सुबह एक बार फिर लोगों को धरती हिलती महसूस हुई। इस बार 4.9 तीव्रता का झटका दर्ज किया गया, जानकारी से आफ्टर शॉक बता रहे हैं। हालांकि इसकी तीव्रता पहले वाले भूकंप जितनी नहीं थी, लेकिन इससे पहले से डरे हुए लोगों में दहशत और बढ़ गई। USGS के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दुनिया भर में 4.5 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 93 भूकंप दर्ज किए गए हैं। इनमें वेनेजुएला के दो बड़े भूकंप के अलावा जापान के तट के पास 6.9 तीव्रता का भूकंप और उत्तरी कैलिफोर्निया में 5.6 तीव्रता का भूकंप भी शामिल।

0: वेनेजुएला की इस मुश्किल घड़ी में दुनिया के कई देशों ने मदद का हाथ बढ़ाया है और भारत भी पीछे नहीं रहा। भारत सरकार ने मानवीय सहायता के तहत ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला रवाना होंगे। भारत ने 41 सदस्यीय विशेष मेडिकल और राहत दल भेजा है, जिसमें 9 अनुभवी सैन्य डॉक्टर भी शामिल हैं। इसके अलावा फील्ड हॉस्पिटल, पोर्टेबल अस्पताल, जरूरी दवाइयां और 35 टन से ज्यादा राहत सामग्री भी भेजी गई है। ये टीम प्रभावित इलाकों में पहुंचकर घायल लोगों का इलाज करेगी, जरूरत पड़ने पर सर्जरी करेगी और ट्रॉमा के मरीजों को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इस कठिन वक्त में वेनेजुएला के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है और हर संभव मदद के लिए तैयार है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े देशों ने भी राहत अभियान शुरू कर दिया। अमेरिका ने 15 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। इसके साथ ही राहत कार्य के लिए 2 सैन्य जहाज, हेलीकॉप्टर, विमान और मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया गया। मेक्सिको ने 250 सैन्य बचाव कर्मियों के साथ 5 खोजी कुत्ते और आधुनिक उपकरण भेजे हैं। वहीं स्पेन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक और अल सल्वाडोर समेत कई देशों की टीमें भी राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। हालांकि इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मदद के बावजूद हालात अब भी काफी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस आपदा से करीब 70 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं। लाखों लोगों के सामने अब खाने पीने के पानी, दवाइयों और रहने की जगह का संकट खड़ा हो गया है। वेनेजुएला पहले से ही आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था, ऐसे में भीषण भूकंप ने देश की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा दिया। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि फिलहाल देश के तेल उद्योग को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जिन शहरों में तबाही हुई है वहां दोबारा नॉर्मल हालात लौटने में महीनों नहीं बल्कि शायद सालों लग सकते हैं। फिलहाल पूरे वेनेजुएला में एक ही लड़ाई चल रही है, वक्त के खिलाफ लड़ाई। हर गुजरता घंटा इस उम्मीद को थोड़ा और कमजोर कर देता है कि मलबे के नीचे दबे लोग जिंदा मिलेंगे, लेकिन बचाव दल अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। लगातार मलबा हटाया जा रहा है, हर आवाज पर ध्यान दिया जा रहा है और हर उस जगह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है जहां किसी के जिंदा होने की सबसे छोटी उम्मीद बाकी।
1: बिल्कुल जी, बहुत कोशिशें जड़ियां ने जबरदस्त तरीके ने चल रही हैं, बट ये अभी आने वाले टाइम च हालात दसंगे ते किन्ने के लोग बच पाए हैं ते किन्ने बेचारे जड़े ने मलबे थले मारे गए। सो अज दे प्रोग्राम च आप अपनी गल्लां बातां ते जारी रखते ही हैं, बट नाल दी नाल तुहानूं दस दिए भी ये प्रोग्राम तुसी मंडे, ट्यूजडे, थर्सडे, फ्राइडे शाम नूं 7-8 ते संडे 1-5 बजे तक मैं तुहाडा होस्ट ते दोस्त रजेश इन्हां प्रोग्रामां नूं लै के हाजिर हाँ, जिहदे च वक्खरी वक्खरी तरह दीआं खबरां ते गल्लां बातां चल रहीआं। इंडिया वाले पास चलते हैं, उत्थों दी एक डार्क फैक्टरी जिहड़ी है की कहिंदी है डार्क फैक्टरी दी रिपोर्ट थोड़ी जिही सुन लैंदे आं फिर वापस मिलदे आं।
2: ना कोई कर्मचारी, ना कोई लाइट, सिर्फ दर्जना मशीना जो हनेरे विच बिना किसी मनुखी दखल दे सैमी कंडक्टर चिपा तैयार कर रही हैं। क्योंकि इत्थे सब कुछ ऑटोमेटेड है, इसलिए कोई मनुखी दखल नहीं है। हर आधुनिक गैजेट्स नो चिप दी लोड हुंदी है। अनुमाना मुताबक 2030 तक भारत दे सैमी कंडक्टर बाजार दा आकार 110 अरब डॉलर तक पहुंचन दी उम्मीद है। तमिलनाडु दी इस डार्क फैक्टरी विच पूरी तरह ऑटोमेटेड उत्पादन प्रणाली राही सैमी कंडक्टर चिपां तैयार कीतियां जांदियां हन। साडी कंपनी दे विच इस नूं ऑटोनोमस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहा जांदा है। जदों उत्पाद रखा जांदा है तां उसदी अपने आप जांच हुंदी है, ऑप्टिकल टेस्टिंग हुंदी है ते फिर उसनूं अग्गे रखा जांदा है। इसलिए सब कुछ रोबोट्स अते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राही अपने आप हुंदा है। जदों हर काम ऑटोमैटिक तरीके दे नाल हुंदा है तां असीं लाइटां बंद कर दिंदे हां। इसे करके अजिहियां ऑटोनोमस मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां नूं डार्क फैक्टरी कहा जांदा है। सिर्फ उत्पादां नूं रखण अते अंतिम पैकेजिंग लई हत्थी काम दी लोड़ पैंदी है। सेमीकंडक्टर खेतर विच आत्म निर्भर बनन अते विश्व पद्धरी आगू बनन दी भारत दी कोशिश हकीकत बन रही है, पर कुछ कमियां अजे भी मौजूद हन।
3: So there is design, there is...
4: इस विच डिजाइन, मास्क बनाउणा, फैब्रिकेशन अते पैकेजिंग, ए चार पड़ाव हुंदे हन। उन्हां विच दो पड़ावां विच असीं काफी मजबूत हां, जदकि बाकी दो पड़ावां विच सुधार दी उम्मीद कर रहे हां।
3: होपफुली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी विल इंप्रूव दैट।
2: इत्थे फैक्टरी विच एक क्वालिटी इंस्पेक्टर उत्पादन दे हर पड़ा दी गुणवत्ता दी जांच करदा है, खामियां दी पहचान करदा है, रिपोर्टां तैयार करदा है अते उन्हां नूं निर्माताओं कोल भेजदा है।

0: उड़ीसा, केरला, बहुत जगहों पे देखा है कि मिड डे मील का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हर स्टेट के हिसाब से अलग है, क्योंकि बजट जो है वो सेंटर से आता है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और मेन्यू जो है वो स्टेट डिसाइड करती है, भले ही बजट सेंट्रल से आता हो। एक चीज जो बच्चों को लगभग मिल जाती है वो है चावल और दाल, और ये दोनों ही बहुत कार्ब डेंस है। हालांकि दाल में है लेकिन 8 कटोरी दाल में जितना प्रोटीन होता है वो आप कंपेयर करें अंडों के हिसाब से तो एक अंडे में शायद उतना होगा। वो बहुत जगहों पे साग मिलता है, सोयाबीन मिलता है, लेकिन काफी बच्चे सोयाबीन नहीं खाते हैं, और जितना सोयाबीन हमको, अगर हम 3 अंडे का प्रोटीन मात्रा देखें तो उससे 20 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है जो कि रेकमेंडेड है मिड डे मील्स में, और वही अगर आप सोयाबीन में देखें तो 130 ग्राम्स है। तो एक बच्चे के लिए वो 130 ग्राम सोयाबीन खाना जो उनके लिए कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है वो काफी समय मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जिन स्टेट्स में अंडा लगातार मिलता है, 4 दिन या 5 दिन मिलता है, वहां बच्चों के स्टंटिंग वेस्टिंग नंबर्स काफी बेटर है कंपेयर टू स्टेट्स जहां पे अंडा बंद कर दिया गया है या फिर जहां सिर्फ प्लांट प्रोटीन्स मिलते हैं। केरला में देखेंगे तो फिर प्रोटीन वेस्टिंग और स्टंटिंग के रेट्स तमिलनाडु में काफी बेहतर है कंपेयर टू स्टेट्स लाइक यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, जहाँ पे प्राइमरीली वेजिटेरियन डाइट्स दिए जाते हैं मिड डे मील्स में। अगर बच्चे हैं जो ऐसे एनवायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ वो वेजिटेरियनिज्म फॉलो करते हैं तो उनके लिए हम सोयाबीन, पनीर या फिर बाकी चीजें दे सकते हैं, एंड इवन राइस और दाल के फोर्टिफाइड ऑप्शंस आते हैं जिससे हम लोग आयरन, B12, बाकी चीजों को भी हम दे सकते हैं बच्चों को इन डिफरेंट फॉर्म्स।
1: देखिए, जब बात पोषण की होती है तो ये देखना भी बहुत जरूरी है कि उसे बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाना कितना आसान और प्रैक्टिकल है। यहीं पर अंडों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। एक अंडे की औसत कीमत करीब 6 से 8 रुपए होती है। इसके मुकाबले पनीर 300 से 400 रुपए किलो मिलता है। बच्चों को एक बार में जितना पनीर दिया जाएगा, जो कि लगभग 50 ग्राम के आसपास होगा, उसकी कीमत 15 से 20 रुपए बैठती है। साथ ही पनीर को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज या कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत पड़ती है। मिड डे मील योजना के तहत सरकार का प्रति बच्चा रोजाना का एक बजट है। प्राइमरी के लिए ये 6 रुपए 78 पैसे और अपर प्राइमरी के लिए ये 10 रुपए 17 पैसे है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, अंडे को कंप्लीट प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। ये हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत जरूरी है। हमने बात की एशियन हॉस्पिटल में हेड न्यूट्रिशनिस्ट कोमल मलिक से और जाना अंडे से किस तरह का पोषण मिलता है।
2: डाइट में एग्स को होना बच्चों के लिए एक एसेंशियल पार्ट है ताकि वो प्रोटीन के साथ साथ हेल्दी फैट्स भी मिल सके, जैसे अल्फा लिनोलिक एसिड एंड DHA। ये आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट और कॉग्निटिव ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेंशियल फैक्ट्स हैं। इसके अलावा एग्स में विटामिन ए, डी, ई के साथ साथ मिनरल्स जैसे आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है। तो बच्चों की डाइट में रोज हमें एटलीस्ट 4 to 5 डेज तो हमें डाइट में बच्चों की एग्स को देना चाहिए।
1: हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के मुताबिक भारत में आज भी हर 3 में से 1 बच्चा कुपोषण का शिकार है। हालांकि पिछले यानी सर्वे 5 के तुलना में देखें तो कुछ सुधार दिखता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग कम हुई है। स्टंटिंग यानी अपनी उम्र के हिसाब से कम हाइट होना। ये 35.5% से घटकर 29.3 हो गई है। फिर भी लगभग हर 10 में से 3 बच्चे इससे प्रभावित हैं। इसके अलावा 5 साल से कम उम्र के हर 100 बच्चों में से लगभग 31 बच्चे अंडरवेट हैं। कुपोषण से लड़ाई में चीन एक बहुत बड़ा उदाहरण है। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक 1990 से 2000 के बीच 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट और स्टंटिंग की समस्या लगभग आधी हो गई। अंडरवेट बच्चों का आंकड़ा 19.1% से घटकर 11.2% हो गया। स्टंटिंग 33.4% से घटकर 16.1% हो गई। 2016 आते आते स्टंटिंग 10% रह गई। चीन का ये तरीका शाकाहारी था। उन्होंने यिंग यांग बाओ नाम का एक सोया बेस्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट तैयार किया। ये सप्लीमेंट 6 से 36 महीने के बच्चों के खाने में नियमित मिलाया जाता था। इसमें आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B2 और प्रोटीन होता है। इसे गरीब इलाकों में मुफ्त या कम दामों पर बांटा गया। चीन ने समझदारी दिखाते हुए पूरे देश में एक जैसे नियम लागू नहीं किए। उसने गरीब ग्रामीण इलाकों पर ध्यान दिया। सरकार ने 300

0: 41 गरीब जिलों में 500 मिलियन युआन लगाए, जिससे करीब 14 लाख बच्चों तक मदद पहुंच पाई। भारत में भले ही धार्मिक या कल्चरल विचारधारा के चलते लाखों बच्चों के मिड डे मील से अंडों को हटा दिया गया हो, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बढ़ते बच्चों को खाने में पूरा पोषण मिले, क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए ये मिड डे मील ही दिन भर का इकलौता और मुख्य खाना होता है। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत, आप देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। कोलकाता के
1: एक रिपोर्ट जड़ी तुसी सुनी है, क्योंकि मिड डे मील दे विच बच्चों वास्ते एग्स का जरा रखना बहुत इंपोर्टेंट क्यों है, ये इस इनफॉरमेशन दे विच क्लियर हो जाता। बट प्रोग्राम दे विच अगे वधदे आ, ते पंजाब दे विच भी काफी तेज हवावां दे नाल जिहड़ी भविष्यवाणी की गई है, ते वैदर जिहड़ा उत्थे भी उस तरीके का बनिया रहेगा। मीडिया वालों की गलबात जो करिए आप, कुछ कहें भी मीडिया वाले खुद ही मीडिया नूं खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कि गलबात थोड़ी जी बारे भी इनफॉरमेशन तुहाडे नाल शेयर करते हैं, तो फिर आप अपनी गलबात जिहड़ियां जी इस खबर तो बाद वापस शेयर करते हैं तुहाडे नाल सबरंग रेडियो 94.7 एफएम ते।
2: टीवी चैनल अपना ज्यादा वक्त सरकारी नैरेटिव को आगे बढ़ाने में लगाते हैं। बीजेपी प्रवक्ताओं और सरकार के करीबी लोगों के जरिए ये काम बहस के नाम पर होता है, इससे रोशनी कम, शोर ज्यादा पैदा होता है। आजकल की टीवी पत्रकारिता पर अपनी ये राय रखी कुमी कपूर ने। कुमी उन पत्रकारों में से हैं जिन्होंने 1975 की इमरजेंसी को करीब से देखा। वो लिखती हैं कि आज मीडिया पर लगी पाबंदियां 1975-77 के बीच लगी पाबंदियों जितनी सख्त नहीं है। पहले सेंसरशिप लागू थी, असहमति वालों को बिना मुकदमे के बेमियादी जेल में डाला जा सकता था, अदालत में पेश होने जैसे संवैधानिक हक को भी कुछ वक्त के लिए छीन लिया गया था। लेकिन आज के समय पर भी विचार करना जरूरी है। जिन पत्रकारों को जमीन पर जाकर खबरों की पड़ताल करनी चाहिए, वे खुद पर ही सेंसर लगाने लगे हैं, इस डर से कि कहीं सत्ता में बैठे लोग नाराज ना हो जाएं, जरूरी सोर्सेज न कट जाएं। पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस धारणा को मजबूत किया। फ्रांस में पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, आपके पत्रकार मेरे पत्रकारों से कहीं ज्यादा अच्छे हैं। बीते दौर के सेंसर को आज मीडिया एडवाइजर कहते हैं, जो पार्टी या सरकार में बैठा होता है। ये आमतौर पर पेशेवर कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होते हैं। इनका जॉन स्टुअर्ट मिल वाली सोच से कोई खास नाता नहीं होता। मशहूर दार्शनिक मिल मानते थे कि विचारों का एक खुला बाजार होना चाहिए, जहां हर राय को कहने की आजादी हो। लेकिन आज के मीडिया सलाहकार बस एक कहानी गढ़ने में लगे रहते हैं, मानो मीडिया को संभालना कोई विज्ञापन या पब्लिक रिलेशन का काम हो। आज सेंसरशिप के औजार बदल गए हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग राय रखने वालों की जहरीली ट्रोलिंग होती है। सरकारी जांच एजेंसियों के इस्तेमाल से असहमत पत्रकारों और विरोधियों को परेशान किया जाता है। नागरिकों के हक छीनने के राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवा खड़ा किया जाता है। इसी का हवाला देकर आईटी नियमों में बदलाव किया गया, ताकि सरकार कथित गैर कानूनी इंटरनेट बातचीत तक भी पहुंच सके। इस तर्क के बाद कुमी सलाह देती हैं आज के मीडिया मैनेजरों को। वो लिखती हैं कि उन्हें बीते दौर के कामयाब सलाहकारों से व्यावहारिकता और विनम्रता सीखनी चाहिए, जैसे वीएन गाडगिल, जेपी माथुर, शारदा प्रसाद, बीजी वर्गीज, गोविंदाचार्य, अशोक टंडन, हरीश खरे और अरुण जेटली। इन लोगों ने पत्रकारों से संवाद बनाए रखा, अलग राय पर बातचीत की, खबरों के स्रोत बंद नहीं किए और अलग राय पर शाइस्ता ढंग से भी बातचीत की, और इसी से उन्होंने बेहतर नतीजे हासिल किए, ना कि विरोध की राय सुनते ही खबर के स्रोत काट देने से। भारत जैसे विविधता भरे देश में खुलकर बोलने, बहस और तर्क की संस्कृति है। सच को ज्यादा देर दबाया नहीं जा सकता, खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में। तो फिर वही गलती क्यों दोहराई जाए जो 50 साल पहले इंदिरा गांधी ने की थी? उन्होंने मान लिया था कि विरोध की राय को यूं ही खत्म किया जा सकता है। सत्ताधारी पार्टी के भीतर भी बहस की कमी है, जो कुमी कपूर को परेशान करती है। वो लिखती हैं, बीजेपी का संसदीय बोर्ड बहुत कम बैठता है, जब बैठता है तो बस कहीं और लिए गए फैसलों पर मुहर लगाता है, बिना किसी सलाह मशवरे के। तजुर्बे में कच्चे जूनियर नेताओं को अचानक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, ये भी पार्टी के भीतर लोकतंत्र न होने की एक मिसाल है। इतनी ही चिंता की बात एक और है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली संवैधानिक संस्थाओं की आजादी और ईमानदारी का स्तर गिर रहा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की एसआईआर सूची से 90 लाख से ज्यादा नाम खुलेआम हटाए। इससे एक ऐसे चुनाव पर सवालिया निशान लग गया, जिसमें जनता का मूड साफ तौर पर ममता बनर्जी के खिलाफ था। हाल ही में टीएमसी और शिवसेना यूबीटी के

0: ताकि आने वाली पीढ़ियां उस रास्ते पर ना चले। पर विडंबना यह है कि आपातकाल के कई तौर तरीके आज खुद दोहराए जा रहे हैं। विज्ञापनों, होर्डिंग्स और सार्वजनिक मंचों पर शासकों की गैर जरूरी चापलूसी होती है, यह भी उसी काले दौर की याद दिलाती है, और याद दिलाती है कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष डी के बरुआ के उस चापलूसी भरे नारे की, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। यहां पे कुवी कपूर अपनी बात समाप्त करती हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय तक इंडियन एक्सप्रेस के साथ जुड़ी रही और अब कॉलमिस्ट स्तंभकार हैं। इस बात में कुवी कपूर की आपको कितना दम लगता है, आप किन बातों से सहमत हैं, असहमत हैं, जरूर बताइए।
1: तुहाडी अपनी वेबसाइट है पर तुसी टैक्स फोटोज या वीडियोस चेंजेस खुद नहीं कर पांदे, ता तुहानू लोड है आई वेब गाय वाले नु 403-400-0203-403-400-0203 ते कॉल करन दी www.iwebguy.ca।
2: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
3: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
2: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
3: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
2: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप्स तक इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
3: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
2: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890। लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक,
3: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
4: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday 7 to 8 p.m. Sunday 1 to 5 p.m.
5: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student visa, visitor visa, super visa, LMIE applications, family immigration, provincial nominee application, ate citizenship application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi main Maninder Singh Tillo ate Inderjot Kaur Tillo ikko chhat hai immigration ate insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karne layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillo, Asia Pacific Immigration Consulting Limited.
6: Regulated Canadian Immigration Consultant.
5: 403-225-1111.
4: From the heart of Calgary to every corner within a 250 kilometer reach, Sabrang Radio is connecting voices, stories, and communities like never before. Whether you're in Calgary, Airdrie, Chestermere, Cochrane, or tuning in from Okotoks, High River, Strathmore, and beyond, we are one sound, one family, one Sabrang. Feel the rhythm, celebrate the culture, and stay connected with voices that matter. More events, more stories, more celebrations are on the way, only on Sabrang Radio, your voice across every mile. Visit our official website, www.sabrang.ca.
0: देवियों और सज्जनों, हम और आप रात दिन सोशल मीडिया पर और असल जिंदगी में जाति, धर्म, कौन सा नेता कितना अच्छा है और कौन सा एक्टर कितना बुरा है, जब ये सब चर्चाएं कर रहे होते हैं, तब हमारा पड़ोसी चीन निवेश में जुटा होता है रोबोट के। वो इस रेस में बहुत आगे है। दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा चल रही है रोबोटिक्स के मामले में अमेरिका और चीन के बीच, और हम इस जंग में कहीं नहीं है। सी राजा मोहन, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, इंडियन एक्सप्रेस के कंसल्टिंग एडिटर, विस्तार से ये तर्क सारे ब्योरों के साथ आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप इसे पढ़ें, देखें, सुने, जाने, साझा करें और इसे अपनी विचार सरणी का हिस्सा बनाएं। तो आगे की बात सी राजामोहन की कलम से। रोबोटिक्स की जिस क्रांति पर सदी की ताकत टिकी है, उसी क्रांति में अमरीका और चीन के सामने भारत सिर्फ एक दर्शक बना बैठा है। क्या भारत इस दौड़ में पीछे छूट जाएगा? दो अहम बातें हैं। पहली, रोबोट और एम्बॉडीड

0: इंटेलिजेंस यानी फिजिकल एआई की होड़ अब अमेरिका और चीन के बीच सिमट गई है, जहां अमेरिका इसका दिमाग बना रहा है, चीन शरीर। और दूसरी बात, इस दौर में भारत बहुत पीछे है। जो चीप लेबर कभी भारत की ताकत था, रोबोट का दौर उसे कमजोरी में बदल सकता है। अब जरा इन तर्कों को विस्तार से समझते हैं। एक भाई साहब है, अमेरिका में रहते हैं, एलन मस्क। अमेजिंग अबंडेंस की बात करते हैं, हैरतअंगेज बहुतायत, ऐसा सपना, एक ऐसी दुनिया जहां तकनीकी क्रांति की बदौलत सामान और सेवाएं खूब सारी और सस्ती हो जाएं। ये ख्याल भले काल्पनिक हो पर पुराना है, जैसे हमारे पुराणों का अक्षय पात्र या यूनानियों का कॉर्नुकोपिया। कार्ल मार्क्स भी मानते थे बढ़ती उत्पादक ताकतें इंसान को कड़ी मेहनत से आजाद कर सकती हैं। मस्क का दांव मार्क्स से छोटा है। उन्हें यकीन है कि तकनीकी क्रांति यूनिवर्सल हाई इनकम यानी सबके लिए ऊंची आमदनी वाले समाज को बना सकती है। अब ये सपना सच हो ना हो पर तकनीकी बदलाव आ चुका है और इसे कहते हैं एम्बॉडीड इंटेलिजेंस या फिर फिजिकल एआई। डिजिटल एआई सवालों के जवाब देता है पर वो कंप्यूटर के अंदर कैद रहता है। एम्बॉडीड इंटेलिजेंस अलग है, ये अक्सर इंसानी शक्ल में बने रोबोट होते हैं जिन्हें ह्यूमनॉइड कहते हैं। ये अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं, फैसले ले सकते हैं और अपने मशीनी हाथ पैरों से काम कर सकते हैं। ये फैक्ट्री, अस्पताल और जंग के मैदान में भी कदम रख सकते हैं। मस्क का दांव है कि ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट उत्पादन के लिए वही कर सकते हैं जो कंप्यूटर ने इंटेलिजेंस के लिए किया। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इंडस्ट्रियल रोबोट दशकों से फैक्ट्रियों में है। नई कोशिश ये है कि उन्हें एआई से इतना समझदार बना दिया जाए कि वो इंसानों के लिए बनी जगहों पर भी काम कर सकें। ये इस सदी की सबसे बड़ी रणनीतिक होड़ होने वाली है और इसका रास्ता वॉशिंगटन और बीजिंग से होकर गुजरता है। इस होड़ में दोनों की ताकत अलग है। अमेरिका फ्रंटियर एआई, एडवांस चिप डिजाइन और उस सॉफ्टवेयर में आगे है जो किसी भी ह्यूमनॉइड रोबोट का दिमाग बनता है। वहीं चीन ने शरीर बनाने वाला औद्योगिक तंत्र खड़ा किया है। सोलर पैनल, बैटरी और रेयर अर्थ की तरह रोबोटिक्स में भी वो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मंच बनने जा रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स के मुताबिक साल 2024 में दुनिया भर में लगे इंडस्ट्रियल रोबोट में से 54% अकेले चीन में बने, यानी करीब 295,000 यूनिट। ये किसी एक देश का अब तक का सबसे बड़ा सालाना आंकड़ा है। चीन के पास ऑपरेशनल रोबोट का भंडार भी 20 लाख पार कर गया है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह सीमित नहीं रहना चाहते। बीजिंग एआई का फासला पाटने में पैसे झोंक रहा है और वॉशिंगटन घरेलू मैन्युफैक्चरिंग दोबारा खड़ी करने के लिए औद्योगिक नीति की तरफ लौट रहा है। फिलहाल ह्यूमनॉइड बाजार पर चीन का दबदबा है। दुनिया के करीब 85% ह्यूमनॉइड वही बनाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के मुताबिक यूनिट्री और एगीबॉट जैसी चीनी कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं। उधर अमेरिका की बात करें तो मस्क जल्दी अपने ऑप्टिमस 3 ह्यूमनॉइड का पायलट उत्पादन शुरू करने वाले हैं। पायलट यानी शुरुआती उत्पादन। आगे इसे टेक्सास की एक गीगा फैक्ट्री में सालाना 1 करोड़ यूनिट तक वो पहुंचाना चाहते हैं। अब हम भारत पर आते हैं। इस रेस में भारत कितना पीछे है? हमने 2024 में 9,100 औद्योगिक रोबोट इंस्टॉल किए, इंडस्ट्रियल रोबोट, जो पिछले साल से तो 7% ज्यादा है, पर फिर भी सालाना इंस्टॉलेशन में हम अभी दुनिया में 6वें नंबर पर हैं। अमेरिका, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, जर्मनी हमसे बहुत आगे है। भारत का रोबोट घनत्व कितना है? लगभग 10, यानी हर 10,000 मैन्युफैक्चरिंग मजदूरों पर 10 रोबोट। और दुनिया का औसत है 132 और साउथ कोरिया का औसत कितना है? 1200। अगर अमेरिका और चीन की बात करें तो वो तो इस होड़ में आगे रहने की जंग लड़ रहे हैं और भारत वो एक दर्शक है। हमारे लिए दांव ऊंचा है। 3 दशकों से देश की बढ़त सस्ते मजदूरों की भरमार पर टिकी रही, लेकिन अगर एम्बॉडीड इंटेलिजेंस का दौर आता है तो हमारी बढ़त पर बड़े सवाल खड़े होंगे। जिस चीज को हमारी कभी ताकत माना जाता था वो रुकावट बन सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का मुकाबला अब मजदूरी के फर्क से नहीं होगा, रोबोटिक्स से तय होगा। और यहां पर आत्मनिर्भरता की बयानबाजी रणनीति का विकल्प नहीं बनेगी। देते रहिए भाषण। चीन के उलट भारत अपनी रोबोटिक्स की महत्वाकांक्षा को दुनिया से अलग थलग नहीं रख सकता। उसका अभी का काम है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को घरेलू शोध, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की सब्र से की गई तैयारी के साथ जोड़ना। और हमारे पास उम्मीद की वजहें भी हैं।
1: सो इंडिया ते कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता।